0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: India's unshakable news habit.

0: देखिए, तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था। इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वेब कास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है, और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया, उसका छानबीन चल रहा है।
1: ममता बनर्जी को क्या क्या बोली कि मैं भवानीपुर की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी है, भवानीपुर की बेटी बन गई। वो बाजार करने जा रही है, वो घर घर जा रही है, और जो काम स्ट्रांग रूम में हम विरोधी लोग करते थे उनको आके वो काम करना पड़ा है। ये सारे संकेत वो संकेत है जिससे ये दिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है और उनके नेता बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि इस 26 का चुनाव तृणमूल कांग्रेस का पराजय निश्चित है।
2: टीएमसी के लोग डरे हुए हैं ना, उन लोगों ने तो काम किया नहीं। 15 साल से लोगों का अधिकार छीना, महिलाओं के साथ बर्बरता किया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, शिक्षा का सर्वनाश किया, तो वो लोग डरे हुए हैं कि जनता उनको वोट नहीं करेगी। लेकिन जनता ने अपना खेला निर्वाचन में कर दिया है, चुनाव में कर दिया है। परिवर्तन हो के रहेगा, हो रहा है। 4 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल खिलने जा रहा है, बीजेपी सरकार आने जा रही है, बंगाल के जनता का सपना पूरा होने जा रहा है। ये लोग थोड़ा बहुत चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है।
3: Well, shifting tracks to Tamil Nadu at this hour. Now, the question is, Vijay could be the biggest factor of this election, and with hours to go, all eyes are now on the actor-turned-politician Vijay. Now, the TVK chief is drawing rare praise from across the political spectrum, with both allies and even rivals taking note of his growing presence. From being called a force to reckon with to predictions of surprising results, there's a clear buzz around his impact. So, as Tamil Nadu votes are being counted, the big question, like I said, remains that can Vijay convert star power into real electoral numbers? Here's a special report on this. Take a look.
4: In a state long dominated by Dravidian majors, Vijay's entry has disrupted the script. With strong youth connect and appeal among women voters, his political plunge is already making waves. And now a surprising endorsement has come from within the ruling camp. MDMK Chief Vaiko, an ally of Chief Minister M.K. Stalin, has called TVK a force to reckon with, even hinting at surprising results.
5: TVK will be a force to reckon with, and it may produce surprises. When the results are declared, there is a possibility, there is a swing among the students and first-time voters in favor of TVK.
4: Congress MP Manikam Tagore too acknowledged Vijay's popularity among youth and women voters.
6: I had always been saying that Mr. Vijay will have a huge impact, and Mr. Vijay is a popular figure in Tamil Nadu, and we saw a lot of young and women voters being in his rallies and others, and therefore he will have a huge impact.
4: Yet BCK chief Thol Thirumavalvan offered a reality check, saying Vijay may dent both DMK and AIADMK vote banks, but lacks the capacity to capture power.
7: தமிழக வெற்றி கழகம், திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எதிரான வாக்குகளை பெருவாரியாக பிரித்து கொள்ள இருக்கிறார். ஆனால் தனித்த ஒரு சக்தியாக அவர் திமுக, அதிமுக அல்லது திமுக கூட்டணி

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: India's unshakable news habit.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। India's unshakable news habit.

0: You're watching Battleground Bengal. I'm Padmaja Joshi, and here on NDTV, we take our data very, very seriously. So today we are going to talk about the seats that are going to be the decider, the nail-biter seats of West Bengal, on which a lot of political fortunes and futures are going to hinge. In exactly 36 hours from now, when at 8 a.m. on Monday morning, May the 4th, the first batch of postal ballots will be cracked open and the initial leads in tens and hundreds will begin to trickle in. We will, with bated breath, be keen to see the leads, especially the battleground state of Bengal. While some of us will obsess over the BJP's 54-seat fortress in the north, some will be keen to figure out how the 53 seats in the minority belt voted or how Didi did in her Kolkata bastion. There is one parameter that cuts across ages and interests, the VIP seats. Whether you are from Bengal or not, you will be glued to the screen, tracking Bhabanipur, Nandigram, Kolkata Port, Diamond Harbour and many other top contests. And perhaps many of them bellwether seats, which will tell us which way the wind is blowing. And which is why we will not engage in any debates, try and second guess what's going to happen, listen to politicians making their claims, which of course they will. Every side is winning until the EVMs are open. What we will do is talk about data and tell you about these 37 seats, which are going to hold what we call the key to power or the satta ki chabi. Each seat, what are the factors that matter? What is the demography like? What is the SIR deletion like and how it could eventually decide the fate of these seats? So let's start with the first batch, and we are starting with the most keenly watched area, which is Kolkata. And we've picked four seats from Kolkata and one from Purb Midnipur. All of them big names, very important. Bhabanipur, Kolkata Port, Kashipur, Belgachia, Belghata and Nandigram. We'll go through all of them one by one. Bhabanipur, in fact, we have on NDTV discussed in detail. So we'll take very quick word on Bhabanipur and which way it is going. Joining us in this data crunching and analysis is Manoj Singh, the founder and president of Matrees. We also have with us sophologist Jay Mrug and political analyst Tushar Gupta. Jay, quickly, let's start with Bhabanipur. Shubhendu Adhikari versus Mamata Banerjee. It's like the whole world knows about Bhabanipur now. Which way is Bhabanipur going?
1: I think it's a tough contest. 58,000 lead in the last election. Lead narrows down in the Lok Sabha, a near 27% deletion because of SIR. So yeah, I would hold it at tough contest. I wouldn't, you know, wait.
0: Tushar, tough contest or it's decided in your mind?
2: The Bhabanipur seat?
0: Bhabanipur.
2: If BJP is not winning Bhabanipur, then it's not winning the election. It's that simple. If seats like Bhabanipur cannot be won with the updated electoral rolls, the way the improvement happened in the 2024 Lok Sabha, then they're not winning the seats. That's the thing about these seats, Padmaja.
0: Your analysis is BJP is winning and BJP is winning Bhabanipur and the state, right? Because you're saying BJP is winning the state.
2: Yes.
0: So you're saying BJP is winning Bhabanipur. Manoji is also over here. Let's quickly welcome him also onto the set here. Manoji, idhar hi aa jaiye. Abhi aap hi ke numbers hum dekh rahe hain. Bhabanipur, आप कह रहे हैं टफ कॉन्टेस्ट, तुषार गुप्ता कह रहे हैं भवानीपुर जीतनी ही है और बीजेपी जीतेगी।
3: उससे ज्यादा बेहतर है, बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री खड़ी है और जब भी सरकार और मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में हम कोई बताते हैं, पोल को बताते हैं, तो उसको एज देते हैं। जहाँ की सरकार होगी उसको भी एज देते हैं, चूंकि वो मैनेजमेंट उनका होता है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का इतना तो जरूर होता है कि एकदम चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है तो उसको एज दिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री तो
0: 58,000 के मार्जिन से पिछली बार जीती थी और अब आप कह रही हैं कि बीजेपी,
3: लेकिन आप पार्लियामेंट में 8,000 वहां जो था मार्जिन उसको क्यों नहीं आप काउंट कर रही हैं?
0: ठीक है, तो जो 58,000 का मार्जिन था बायपोल में 2021 इन द लोकसभा इलेक्शन, इट वेंट डाउन, दैट मार्जिन वेंट टू ओनली 8,000. सो दिस इज नॉट अ सिटर, इट्स अ टफ कॉन्टेस्ट. तुषार गुप्ता डिसएग्रीज, ही सेज बीजेपी इज विनिंग इट. कोलकाता पोर्ट, राकेश सिंह वर्सेज फिराद हकीम, द मैन हु इज thought to be perhaps as powerful as the chief minister, her left-hand man. She calls him her brother, Firhad or Bobby Hakim. Rakesh Singh versus Firhad Hakim, and you are giving it to the TMC. Why are you giving it to the TMC?
3: टीएमसी को दे रहे हैं, एक मिनिस्टर भी हैं वहाँ पे. दूसरी बात है कि कलकत्ता में जो पिछली बार पूरी तरह से स्विंग कर चुकी थी टीएमसी, और वहाँ पे जो सात सीटें, मुझे छः और सात सीटें जो बीजेपी के दिख रही है उसमें से राकेश सिंह का नहीं दिख रहा, वहाँ पे काफी हुआ है, पोल भी बेहतर हुआ है.
0: और राकेश सिंह पहली बार लड़े हैं?
1: हाँ, नहीं, राकेश सिंह इज अ 2016 कांग्रेस कैंडिडेट.
3: कांग्रेस
1: तो बीजेपी हैज आल्सो ट्राइड अ लोकल कोऑप्शन.
0: ओके, एंड राकेश सिंह बाय द वे इज जस्ट आउट ऑन बेल. देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ समबडी विद अ क्रिमिनल पास्ट इज बीइंग फील्डेड बाय द बीजेपी, बट थोड़ा सा इज नोन एज अ बिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन, थोड़े से ये भी काफी दबंग किस्म के आदमी जाने जाते हैं।
3: देखिए मैं एक चीज बता देता रहूं, आप चाहे कितने भी दबंग के हैं, दबंग में एक मुस्लिम कैंडिडेट को माना गया, मुसलमानों में जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो ये देखा जाता है कि उसका उस समाज में कितनी दबंगई है या वहां पे उस एरिया में कितनी दबंगई है। हिंदू का जब सिलेक्शन होता है तो ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि भाई ये बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप के, तो उसका इफेक्ट पड़ता था वहां पर। वो चीजें राकेश सिंह का नहीं दिख रहा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे टीएमसी का
0: ओके ही इज दबंग हैज अ बिट ऑफ अ स्ट्रांग मैन इमेज, बट हियर अ कंस्टिट्यूएंसी तुषार गुप्ता विद अ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन,
3: 40%
0: मुस्लिम पॉपुलेशन गोइंग टू द टीएमसी, यू अग्री?
2: That is where the TMC gets an edge because of the population, 40% Muslim population. That is the only reason the TMC gets an edge, because otherwise the BJP's vote share has also not considerably improved in the 2024 elections. But the SIR deletions here are actually greater than the winning margin of 2021. So we also have to take into account. But again, I would agree here, TMC gets an edge purely and purely because it's a 40% Muslim population assembly and they are going to lock, stock and barrel rally behind the TMC.
0: Okay, now let's talk about Kashipur Belgachia, and this is in North Kolkata. I think Kashipur Belgachia, really? North Kolkata. Ritesh Tiwari versus Atin Ghosh in this particular seat, and this also has been given to the TMC. Kashipur Belgachia, aap kyun de rahe hain TMC ko?
3: अब देखिए क्या ये तीन सीट आप चले जाइए कोलकाता का, तीनों का, कोलकाता पोर्ट चला जाइए, काशीपुर चले जाइए और ये तीनों सीट, ये तीनों सीट है जहां पे मार्जिनल एज मिल रहा है, ये सीटें बदल
0: टीएमसी
3: को मिला, लेकिन ये तीनों सीटें बदलने की संभावना है,
0: मतलब बीजेपी इनमें जीत सकती
3: है, सकती है।
0: तो वो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड इसमें आपने थोड़ा सा बड़ा यू नो लार्ज हार्टेडनेस में आपने दिखा दिया टीएमसी को।
1: क्वालिफाई दैट स्टेटमेंट, बीजेपी जीत सकती है।
3: जीत सकती
1: है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, इन 2024 द मार्जिन with which the BJP lost shrunk to just 5%. That's point number one. Point number two, it does have a lot of North Indian voters also, Kashipur Belgachia. A third important point, this is exactly the constituency in which the RG Kar Medical College is also located.
0: Oh, okay. तो तब तो फिर सेंटिमेंट होगा यहाँ पे।
3: हाँ, तो इसीलिए कर रहे हैं। देखिए अभी एज, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सर्वे करते हैं तो दो तरह से करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं, दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम लोग कास्ट का भी देखते हैं, पोल का नेचर देखते हैं, कुछ दिन पोल किस तरह का हुआ, तो ये सब मिलाने के बाद लगा कि नहीं टीएमसी को एज मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा।
0: ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ तुषार गुप्ता पीपल हु आर बंगाली स्पीकिंग, and organizationally the Trinamool Congress is strong in Kashipur Belgachia. Who do you think looks ahead here?
2: Look, the TMC won this seat by a margin of 35,000 votes in 2021. The SIR deletions amount to 58,000. That's point number one. Point number two, yes, the TMC organizational skills might be very good in this seat, but the BJP upped its vote share by 10 percentage points between 2021 and 2024. So clearly, the BJP is also doing something right. And I think someone mentioned that the RG Kaur Hospital is also located within this assembly boundary. So that will be also weighing on the minds of the people there. So I would give this seat to the BJP. To think that a 10 percentage point jump and the entire winning margin being wiped out and the whole anti-incumbency, because RG Kaur is a huge case across Bengal amongst the women. And if it's not going to reflect here, where else would it reflect?
0: And also, यहाँ पर जो रितेश तिवारी का कैंडिडेचर है, क्या ये भी इनका हिंदी स्पीकर का बैकग्राउंड है इनका? क्योंकि मेरे ख्याल से
1: सिटी which has a lot of the old jute mills, a lot of the old factories and workshops. So it did have a lot of the old migrant labor from other states. Ye seat mein.
0: Which is why you've got Ritesh Tiwari, whose background is ki ye Hindi speaker hai. Matlab Hindi speaking Bengali hai. Aur yahan par kaafi star power, because yahan pe hi, if I'm not mistaken, is the place jahan Manoj Tiwari, aapke jo Gorakhpur ke sansad hai, whose name I keep forgetting.
1: Mr. Ravish Kishan, he campaigned in this entire belt.
0: Exactly. Ravi Kishan, Manoj
3: Tiwari. Karne gaye the.
0: Pawan Singh ko yahan pe RJD ne bheja tha prachar karne ke liye. So interesting, but you're still giving the lead to the TMC, but the BJP can make gains because of the demography of this area. Now let's talk about the next seat, Belghata. Here you have Kunal Ghosh. You've seen him off late, bahar camp karte hue outside, you know, that strong room where all the EVMs were placed. Kunal Ghosh is the candidate here versus Partha Chaudhary. Here also you're giving it to the TMC. Reason?
3: कैंडिडेट उनके बेहतर हैं, दबंग है, काफी दिनों से वहां काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज को देना चाहिए कि प्रथम चौधरी को देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये वो एरिया है जहां पे पहले से भी ममता का पकड़ रहा हुआ है और पिछला मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग
1: 65% ऑफ द वोट्स इज द लास्ट टाइम मार्जिन, सो देयरफॉर दिस हैज टू मोर ऑर लेस रिमेन अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड।
0: ओके, सो दिस इज अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड, सीम्स क्वाइट फेवरेबल टू देम। तुषार, एनी अदर थॉट्स अबाउट दिस प्लेस? कुणाल घोष प्रोमिनेंट फेस, दबंग इमेज है, मार्जिन बहुत अच्छा था, व्हाट डिड द एसआईआर डू टू दिस सीट?
2: द विनिंग मार्जिन हैज बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बाय द एसआईआर, ऑलमोस्ट, एंड दे हैड अ 65% वोट शेयर इन 2021, सो यस, इवन विद दैट मार्जिन बीइंग वाइप्ड आउट, द टीएमसी विल लाइक टू स्टार्ट एज अ फेवरेट, बट इन माय ओपिनियन दिस सीट विल बी टू क्लोज टू कॉल, आई वुडंट जस्ट गिव इट अवे टू द टीएमसी एट दिस पॉइंट।
0: इंटरेस्टिंग, सो वी ऑलरेडी हैव स्पोकन ऑफ 4 की सीट्स आउट ऑफ 11 इन कोलकाता, एंड एट लीस्ट 4 of them are seeming, at least 3 of them are seeming a tough contest. It's only in Belghatta where we are giving the TMC an edge. Tushar disagrees even there. Why? Because of the SIR factor. Now let's shift our focus to Nandigram. In Purb Midnipur, this is where Shubhendu Adhikari is the sitting MLA. Pabitra Kar, who used to be earlier his aide, has been fielded. But you're giving it to the BJP. Aapko lag nahi raha hai ye jo ek Vibhishan ko TMC ne field kiya hai?
3: Dekhiye, pichli baar kya tha ki Mamata ladi thi, unka मार्जिन कम था, एक बड़ा थी, तो उसमें चुनाव करने में वहां के लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे एक प्रयोग किया जाता है, इनके क्षेत्र में किया गया था, उत्तर प्रदेश में हुआ था कि भाई हम अपने छोटे लीडर को भी लेकर यहां लड़ाकर देखेंगे तो सिंपैथी मिलेगा, कैडर जुड़ जाएगा, सिर्फ टीएमसी उतना ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के चुनने को जा रहा हूं,
0: क्योंकि
3: एक तरफा वोट जा,
0: क्योंकि नंदीग्राम में फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर नंदीग्राम इज इन टू पार्ट्स, नंदीग्राम ए एंड नंदीग्राम बी, और नंदीग्राम 1 नंदीग्राम 2 समथिंग like that, and one is Hindu majority, one is Muslim majority. Muslim majority votes TMC ko nahi aayenge, Pavitra Kar ko nahi aayenge.
3: Nahi, usme se dekhiye, jab CM ka chunne ka baat ho तो लोग ज्यादा उसके तरफ झुकाव होता है, लोग
2: बीजेपी जीती थी पिछली बार,
3: उस जगह के लोग नंदीग्राम को लग रहा है कि इस बार मैं मुख्यमंत्री को चुनने जा रहा हूँ, बार बार उसपे वहां पे जो हम लोग गए थे उस पर बात भी हो रही थी कि भाई ये तो भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ हमें रिजाइन करके कहें कि नहीं, वो तो सिर्फ गए हैं ममता जी को हराने के लिए, ये मुख्यमंत्री भी रहेंगे तो नंदीग्राम से ही रहेंगे, ये सोचती
0: मोर प्रेशर ऑन शुभेंदु अधिकारी, नाउ ही कांट लीव नंदीग्राम इवन इफ ही हैपेंस टू विन बोथ द सीट्स, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस जय नंदीग्राम?
1: I do expect him that as the LOP now, having anyways won last time, he would actually reinforce the victory. So I actually expect him to win by a bigger margin.
0: By a bigger margin. Tushar Gupta, what's the story on SIR here?
2: No. SIR or not
0: SIR. And again,
2: SIR,
0: I reiterate, because we keep saying that demography is going to be deciding, but you have a decent number of Muslims here. You have got, again, somebody who was with Shubhendu Adhikari in the TMC, knows, you know, his Achilles heel. You don't think that's going to be a factor at all?
2: So you see Kolkata put there, the deletions there were 70,000. In Nandigram, it's 7,000, roughly 7,000. So SIR is not a factor there. But if Shubhendu Adhikari is indeed heading to become the next chief minister of West Bengal, possibly Nandigram will see even a bigger BJP victory than it saw last time. It won't be a narrow victory, unlike 2021.
0: Okay, now let's take a look at the next set of seats. And this time we are talking about the seats which have got a lot of headlines. The first seat we're talking about there is Sandesh Kari. And this we are talking about North 24 Parganas. North 24 Parganas, we have picked up 7 seats here. North 24 Parganas is going to be very crucial for the BJP to be able to crack it. Manuji, abhi kitni seats hain North 24 Parganas mein? और कितनी बीजेपी कितनी टीएमसी के पास है?
3: देखिए, पिछली बार का जो है आंकड़ा जो था हमारे पास करीब करीब 50% का था, 65 सीटें दोनों शायद मिलाकर हो रही है ना, 24 परगना का दोनों का, और उसमें
0: से 24 परगनास टुगेदर हैव 65%
3: उसमें से बीजेपी का जो सीटें थी वो करीब 6 या 7 सीटें थी, लेकिन इस बार वो सीटें बढ़ते हुए आपको 20 के ऊपर जा रही हैं। यही एरिया है जहां पे टीएमसी का
0: नॉर्थ एंड साउथ में मिला के उनकी सिर्फ 6 सीटें थी, आप कह रहे हैं अब वो 20 पे जा रही है, एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ दीज विल बी फ्रॉम नॉर्थ 24, बिकॉज साउथ 24 इज अगेन वेरी वेरी टफ फॉर द बीजेपी, अगेन द सिंपल रीजन डेमोग्राफी।
3: 65 सीटें थी, 65 सीटें हुई थी, जिसमें से इस बार हाफ तक भी बीजेपी चले जाए, मैं उसको सुधार कर रहा हूं, चूंकि मैं उस समय बोला था ये 20 से ऊपर सीटें जाएंगी यहाँ पे बीजेपी की, ये दोनों
0: और ज्यादा गेन्स होंगे नॉर्थ 24 परगनास में। सो नाउ लेट्स लुक एट द इंडिविजुअल सीट्स, एंड दिस बाय द वे इज आल्सो एन एरिया व्हिच हैज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ द सो कॉल्ड हिंदी भाषीज। अगेन इट हैज दैट बैरकपुर एरिया वेर यू हैव गॉट द जूट मिल्स, यू हैव गॉट द ओल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेटल्ड हियर, एंड प्लस यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मटुआ वोटर्स एज वेल। मटुआ
3: वोटर्स बात बता दूं कि ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भर भर के बाहर से लोग जा रहे वोट करने, उसमें सबसे ज्यादा कहीं के लोग आए थे, तो यही दो परगना है जहां पे लोग बाहर से पोल करने जाए थे, यानी कि यहां से मजदूर वहां पे ज्यादा गए थे और वो आ रहे थे फिर वापस पोल करने।
0: इंटरेस्टिंग, सो द माइग्रेंट वर्कर, ऑल दोस वीडियोस यू सी पीपल कमिंग इन ट्रेन्स वॉकिंग बैक, ऑल्सो कमिंग बैक टू नॉट 24 परगनास, हाउ डज इट अफेक्ट द टर्न आउट और द रिजल्ट ऑफ दिस सीट, लेट्स एग्जामिन। संदेश खाली प्रोन टू violence, you had heard the horrific stories of how in Sandesh Khali before the Lok Sabha elections women had accused some TMC leaders Kadar of rape. There you have Sanat Sardar going up against Jharna Sardar. In 2021 the TMC had won, this time you are saying that it's going to turn to the BJP. Why is that?
3: चीजें जब बदलती हैं, देखिए होता क्या कि हर जब आप विधानसभा के जाएंगी तो ऐसा नहीं होता है कि इस विधानसभा का नेचर कुछ और होगा, उस विधानसभा का नेचर होगा। जब इलेक्शन होता है पूरे स्टेट का तो उसमें सेंटिमेंट काम करता है कि भाई हमको कैसे पोल करा, वो सरकार के साथ होते हैं या तो सरकार के बाहर होते हैं, तो वो जो मेमोरेंडम चला है ऊपर से कि इस बार हमें सरकार को चेंज करना है, वो दिख रहा है कि यहां पे चेंज हो रहा है। जैसे संदेश
0: पोर्ट में क्यों नहीं हो रहा,
3: नहीं वो वहां पे फिर वो मुसलमान वाला एरिया आ जाता है।
0: यहाँ पे क्या है आपका, क्या पॉपुलेशन है?
3: पॉपुलेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 32% का करीब बासीरहाट में होगा दक्षिण में, अभी मेरे पास वो नहीं है।
0: नहीं संदेश खाली में हाँ। जितना मुझे याद है वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी है, पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है। ओके, सो ट्राइबल पॉपुलेशन, दलित पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डिसाइडर हियर एंड इट विल लीड द seat to flip to the BJP.
1: Between 21 and 24, the vote share difference shrunk from 10 to 4% in Bashirhat also. Yeah, that's what my data says. Yeah. The second thing is, this time around, the BSP and MIM have also fielded Muslim candidates here. So it's sort of going to increase the polarity of the contest and maybe it just turns to favor the BJP.
0: Okay, it could favor the BJP, but remember this is a Muslim dominant, not just influenced.
2: 42%.
1: Yes.
0: How much?
2: 42%.
0: 42%.
1: But
0: data has shown that 30% and above Muslim population, BJP loses that.
3: Yeah. लेकिन उनका जो कहना उनके ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ पे चार या पांच मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये जो पांच मुस्लिम कैंडिडेट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उधर से ज्यादा वोट मिले, यदि 2,000 या 3,000 भी वोट काटेंगे, जो वोट परसेंटेज 2021-2024 का देख रही है, तो ज्यादा लॉसेज है असेंबली के हिसाब से।
0: बट इसमें आई हैव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि यस यू आर सेइंग कि चार पांच मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, चार मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, बट हम ये भी कह रहे हैं कि अनप्रीसीडेंटेड मुस्लिम कंसोलिडेशन
3: 100%।
0: तो अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है तो वो तो टीएमसी को ही वोट देगा ना, वो कांग्रेस को क्यों वोट देगा, उसे पता है बीजेपी आ रही है उसका एसआईआर में नाम डिलीट करने के लिए।
3: दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यदि शायद मैं भी कोई विधानसभा चुन के खड़ा हो जाऊंगा तो इतना तो जरूरी कर लूंगा कि 500 वोट लेकर आ जाऊंगा, मैं जीतने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ लेकिन 500 वोट ले आऊंगा, तो 500 वोट कहां से आएगा यदि वो खड़ा है और कोई बैकअप है उस पर। देखिए क्या होता है चुनाव में हमेशा,
0: बट सर अगर आप 500 वोट काट रहे हैं, बासीरहाट में मार्जिन भी बड़ा था पिछली बार,
3: बड़ा था ना,
0: तो इतने बड़े मार्जिन में 500-100 वोट इधर उधर कटने से हार थोड़ी ना जाएगी टीएमसी।
3: चार नहीं, इस बार वोट परसेंटेज भी देखिए, जो पिछला वोट परसेंटेज था मुझे मेरे हिसाब से 82 के करीब, 81 के करीब होगा, देखिए तो 81 के करीब होगा, और इस बार जो गया है 90% सुपर पोल गया है। बार बार बोल रहा हूँ कि मुसलमान पिछले बार 2021 में हाई पोल कर चुका है,
0: तो आप कह रहे हैं जो हायर वोटर टर्नआउट है ऑल ऑफ इट इज द हिंदू वोटर,
3: हिंदू उसमें ज्यादा है।
0: ओके, हिंदू उसमें ज्यादा है तो बेनिफिट इस हायर वोटर टर्नआउट का बीजेपी को ज्यादा,
3: बीजेपी को हर सीट पे मिल रहा है।
0: ओके तुषार, डू यू अग्री विद दिस?
2: आई विल स्टिल गिव दिस सीट टू द टीएमसी, इट्स आई डू नॉट बाय दिस नोशन दैट मुस्लिम्स विल सडनली वेरी इजीली लेट देयर वोट डिवाइड। आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज फैशनेबल 2-3-4 इयर्स अगो, नाउ दे आर फार मोर अवेयर, फार मोर स्ट्रेटेजिक इन हाउ दे वोट। आई डोंट थिंक दिस विल रियली हैपन, इफ इट हैपेंस good for the BJP, but I do not see it happening at this point.
0: Because you know, this factor is going to be at play in 80 to 120 seats. We have a new data of how 120 seats have 25% and above Muslims and 80 seats have 50% and above Muslims. So if you have a consolidated vote happening, the TMC automatically starts with 80 to 120 seats in its pocket. You only need about 30 to 40 seats more above that. That is going to be very, very important. Now let's take a look at quickly at the next few seats. Like I told you, this is an area which you have a lot of people from the outside, traditionally Hindi speaking, jute mills, Barakpur, Bhatpada are those seats. Barakpur's Kaustubh Bagchi fighting against Raj Chakravarti. Again, you're saying this is going to flip. Interesting story about Kaustubh Bagchi. He used to be in the Congress and he is a lawyer. Very angry with P. Chidambaram. Once he famously told P. Chidambaram ki aap destroy kar rahe hain hamari party ko. And now he has said ki jab tak main Mamata Banerjee ko hata nahi dunga, tab tak main apne sar pe baal nahi ugne dunga.
2: Barakpur is going to the BJP, right?
0: That's what Manoj said.
1: It's very logical because in 24, the margin shrunk to just 2%.
0: Okay.
1: So it's very logical if it can flip now.
0: But kya Kaustubh Bagchi strong candidate hai? Congress se aaye hue
3: hain. हाँ हाँ ठीक है. अच्छे candidate है. जीतते हुए दिख रहा है. और इस बार यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि poll को ध्यान रखिए कि पिछला poll और इस poll में क्या हुआ है. और आप देखेंगे कि
0: क्या हुआ है?
3: काफी हद तक वहाँ पे polling बढ़ा है. तो उसका बेनिफिट जो है ना, देखिए लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई जो पोल इस बार बढ़ा है उससे टीएमसी को फायदा हो जाएगा. मेरा एकदम उससे अलग है. लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जो गए हैं वहां पे वो पोल किसको किए हैं, वो तो भी टीएमसी को किए होंगे. मैंने कहा कि एकदम किए होंगे, लेकिन वो 21 में भी किए, 24 में भी किए, भले वो ना किए हों, लेकिन मैं पद्मना जी का पोल मैं किया हूँ 21 में 24 में, इस बार पद्मना जी करी.
2: Barakpur undoubtedly will go to the BJP. I agree with Sir's analysis. Also, the SR deletions here are to the tune of 45,000 voters. The TMC won it by just 9,000 votes last time.
0: But again, this is a place where the Hindus are in majority. So of this 45,000, there could be
2: of
0: Hindus
2: those
0: also,
2: seven
0: no?
2: seats there on the board. I think the BJP will win six, at least six.
0: Okay.
2: And the BJP just won one last time. They'll win six this time. All because of that one seat, which is Basihar Dakshin, which has a 42% Muslim population. That won't be won by the BJP. That's my opinion. But the other six, I think the BJP is taking them home.
0: All right. So Barakpur, we have all agreed, is going to go to the BJP. Bhatpada, I think this is a no-brainer because ye to aapka khud Arjun Singh ka ek gadi hai. To Bhatpada mein kuch surprise to nahi ho sakta.
3: Nahi.
0: Theek hai. Bhatpada to ja hi raha hai. Let's just assume that it is going. Amit Gupta kaise candidate? If you can quickly talk about. Pawan Singh, by the way, is Arjun Singh's son. Yeah. Arjun Singh used to be a member of parliament, then he lost. Now he's contesting from a neighboring seat
1: and
0: for the assembly election.
1: TMC to BJP to TMC to back to BJP.
3: और ऐसे फैन नेता हैं, बड़ा पॉपुलर हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट.
0: और ये अपनी खुद की लोकसभा हार गए. तो लेट्स एक्चुअली एग्जामिन दिस. आप कह रहे हैं कि ये खुद अर्जुन सिंह अपनी लोकसभा हार गए, पर इनका बेटा असेंबली जीत जाएगा. क्यों?
3: उनका पकड़ है. देखिए पार्लियामेंट
0: अपनी पकड़ से खुद को क्यों नहीं चला पाए?
3: नहीं, उस समय छह विधानसभा जीतना होता है. उस पार्लियामेंट में छह या सात विधानसभा, छह सात से जीत कर आना होगा.
0: तो ऐसा उनका नहीं, ये जो पार्टी हॉपिंग है उसकी वजह से भी लोगों का गुस्सा था उनसे.
3: ऐसा मुझे उस समय नहीं दिखा था. वैसा तब दिखता कि जब लोगों को लगता कि इनको वोट देकर हम जिताएंगे तो जाकर वहां पर कुछ हो, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा वहां पे स्कोप दिख रहा है. तो उसमें नाराजगी क्या थी? टीएमसी हारती तो उसकी नाराजगी थी.
0: ठीक है. सो यू गॉट भाटपाड़ा क्वाइट कंफर्टेबल,

0: काफी कम हो गई थी, बीजेपी 2% से पीछे थी। दूसरी बात, यहाँ पे 2021 में सीपीएम को 21% जितना वोट था। अब गार्गी नंदी राय जैसे जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट है, कह रहे हैं कि बहुत सीपीएम का जो भद्रलोक वोट था वो बीजेपी को माइग्रेट करने की सीरियस सोच में है, तो क्या उससे ऐसी सीटों पे असर पड़ सकता है?
1: नहीं, एकदम पड़ सकता है। दूसरी बात है कि दमदम ऐसा है जहाँ पे हिंदी माने बोलने वाला हिंदी
2: बहुत, क्योंकि ये कोलकाता के उसी में है, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ नोएडा।
1: पिछले बार भी वो बीजेपी पे थे और ये निर्णायक वो लोग हैं, लेकिन टीएमसी के जो रहे हुए हैं कैंडिडेट, जो मंत्री भी रहे हुए हैं, काफी हद तक अपनी पकड़ को बना के रखे, बहुत खराब इमेज उनका वहां पे नहीं गया।
2: ओके, सो शी इज द हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक, चंद्रमा भट्टाचार्य। इट्स एन अर्बन सीट, व्हाट इज द एसआईआर एंड द मार्जिन सिचुएशन ऑन दिस?
3: Damdam North, right?
2: Damdam North, yes.
3: The SI deletions are again more than the margin of victory from last time. The margin of victory last time was 28,000 votes. The SI deletions amount to almost 36,000 votes. And I'm comparing them to the elector numbers of 2021. So the victory margin has been wiped out. And this is again one other seat that the BJP needs to pocket. These all are seats that the BJP was closing in between 2021 and 2024. But if they cannot convert such seats, then getting to 148 becomes really difficult.
2: And you know, which is why we've been saying that not 24 Parganas is going to be critical to any changes that
0: it's
2: we
0: literally
2: see.
0: Literally the bellwether district. Actually.
2: It is the bellwether district. You're absolutely right. If there is one area, I think it would be North 24, and after that, Jungle Mahal.
0: Jungle,
2: you need
0: yes.
2: to completely convert Jungle Mahal, get back all the seats from the TMC, and you need to win in North 24. Then let's talk about Damdam and Baranagar also. Damdam, Baranagar, both staying with the TMC. Do you agree, Jay?
0: Yeah, see, there's some trivia I want to share with our viewers. It's Baranagar is actually the seat of Jyoti Basu. And in 72, it was CPI which defeated the CPM candidate Jyoti Basu there. So, till the last election, the CPM has polled well in Baranagar. I do expect again that if this time a little bit of the CPM vote migrates to the BJP, it can flip it in favor of the BJP. But obviously, he has a better ground report, so I'll trust him than me.
2: यहाँ पे भी आपको लग रहा है
1: TMC का गढ़ रहा शुरू से रहा हुआ है, और जहाँ TMC का गढ़ है इस पर एग्रेसिव होकर वो पोल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा कि बस वही एक कारण है कि जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, लेकिन मुकाबला है।
3: अगर गढ़ है तो फिर तो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात ही ना करें ना। एंटी इनकम्बेंसी
1: बड़ा मार्जिन भी तो है, मार्जिन भी तो बड़ा चल रहा है।
3: जो किले हैं वो एंटी इनकम्बेंसी में तो गिरते हैं। रायबरेली की सीट थी, अमेठी की सीट थी 2019 में, गढ़ था पर वो गिरा। अभी हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ SIR का भी एक फैक्टर है। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है पूरे स्टेट में, तो वो गढ़ों में भी तो दिखेगी ना एक पॉइंट
1: पे। दिखेगी, मार्जिन कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे टीएमसी आ सकती है। ये चीजें। दूसरी बात है कि कोई चीजें चेंज होती हैं तो ऐसा नहीं कि सब चेंज हो जाएगा। 88 सीटें जो है टीएमसी की, जिसपे कहा जाता है कि इनकी मजबूत पकड़ है, अब उसमें से भी मुझे घटते हुए दिखे तो फिर टीएमसी तो बहुत नीचे चली।
3: बट देन पद्मजा, द क्वेश्चन देन रिमेन्स द सेम, इफ इन नॉट 24 परगनास कन्वर्जन बिकम्स दिस डिफिकल्ट फॉर द बीजेपी, आई हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशंस फॉर साउथ 24 परगनास, देन वेयर डज दैट मैजिक नंबर ऑफ 148 रियली कम फ्रॉम?
2: वेल अपेरेंटली फ्रॉम कोलकाता एंड देन फ्रॉम जंगल महल। बताइए आपको कहां लगता है मैजिक फिगर किधर से है?
1: जंगल महल भी है और कोलकाता भी है, दोनों जगह है। जंगल महल में भी इस बार बहुत अच्छा बीजेपी करेंगे।
2: आप तो कह रहे हैं कि मालदा मुर्शिदाबाद में भी गेन कर सकती है ना?
1: कर सकती है। मालदा मुर्शिदाबाद में मैंने तो कल भी बताया कि
3: कलकत्ता भी भद्रलोक है, वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है।
2: बताइए कि अगर कलकत्ता के भद्रलोक बदल रहे हैं तो फिर ये आपके दमदम के भद्रलोक में क्या प्रॉब्लम?
1: दमदम के
2: भद्रलोक क्यों यहाँ पर दम भर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए?
1: स्ट्रॉन्ग एरिया है टीएमसी का, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर भी ज्यादा है उस एरिया से, पारा से या दमदम से कहिए। दूसरी बात है कि जो भद्रलोक की आप बात करिए, भद्रलोक हर जगह पलटे, यदि भद्र नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं था कि 11 की 11 सीट कलकत्ता की सीट हमारे पास आ जाए।
2: ओके, सो ये दमदम नॉर्थ एंड दमदम जो है, इसमें यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ द कोलकाता सीट्स दैट वी हैव सीन। भवानीपुर से भी ज्यादा है। कितना रफली कितना मुस्लिम पॉपुलेशन होगा?
1: मुस्लिम पॉपुलेशन जय जी, हमको लग रहा है कि दमदम वाला एरिया जो है उस पे मेरे हिसाब से कितना है, 34% से ऊपर है कि कितना है? मेरे हिसाब से 34 से ऊपर होना चाहिए।
0: हाँ, it is more than 34%.
2: More than 30% over here. Baranagar also we've already discussed. Now let's go to the next set that we are talking about. We have already seen Kolkata and not 24 Parganas.
3: So,
2: now we are going to go to the really the Waterloo, what we are calling the Waterloo of the BJP. South 24 Parganas, Diamond Harbour, Canning Poob, Bajbaj, Kakdweep, Nadia, we picked up one seat of Kaliganj, and Howrah, Howrah Uttar, South 24 Parganas, one more seat we picked up.

0: चिट्टा भांगर. लेट्स दिस टाइम स्टार्ट फ्रॉम डाउन. भांगर ये तो ISF के पास ही, नौशाद सिद्दीकी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है,
1: कोई चैलेंज
0: लड़ते रहते हैं वो TMC के साथ,
1: वो करते रहते
0: उन दोनों का होता रहता है. जूतम पैजार TMC यहाँ पे बढ़त नहीं बनाएगी,
1: नहीं बढ़ाएगी मेरे हिसाब से.
0: TMC एनी चांस?
2: इसमें थोड़ा सा पेच है कि बिकॉज ही डिसाइडेड टू फील्ड अ कैंडिडेट इन कैनिंग पूर्वा, द टीएमसी डिस्पैच द कैनिंग पूर्वा शोकत मल्ला टू फाइट अगेंस्ट हिम हियर. दैट्स द ओनली ट्विस्ट इन द टेल
0: एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट यू विल सी मैक्सिमम स्टोरीज ऑफ पीपल बीटिंग ईच अदर अप सो फार एंड गॉड फॉरबिड इवन ऑन काउंटिंग डे इन these two seats, Bhangar and Canning Purba. Canning Purba, by the way, also had the largest polling percentage in the entire state. You've got a massive population of Muslims in both Canning Purba as well as in Bhangar. What do you want to say about both of these seats? Bhangar we are giving to ISF and Canning Purba we are giving to TMC.
3: No. Even if there is a BJP tsunami, I don't think those two seats are coming to the BJP.
0: Because I'll ask you a question. Manuji, because Canning Purba, जितना मैंने पता किया था, यहाँ पर एक local जो है गुस्सा है TMC के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल से शौकत मौला जो पहले कैनिंग पूर्वा में थे उनको भांगर भेज दिया गया है, तो उनके लोग काफी प्रोटेस्ट करते हैं. आपको नहीं लगता है कि इसका कुछ भी फैक्टर होने वाला है? एंड अगेन हियर इज अ प्लेस जहां पे सारे कैंडिडेट्स बारिंग बीजेपी मुस्लिम्स हैं.
1: देखिए यहां पे कड़ा मुकाबला है लेकिन टीएमसी के लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है कि मैं कांग्रेस को चुनूं कि CPI को. वो बीजेपी को चुनने में थोड़ा हिचक करेंगे जो उनके कैडर वोटर हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और उनके जो कहिए कि गुंडा बदमाश टाइप के पर्वती हैं, वो चेंज नहीं करेंगे.
0: ठीक है, तो दीज आर द टू सेफ सीट्स, वन फॉर ISF, वन फॉर TMC. लेट्स टेक अ लुक एट द वंस व्हिच हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग. नदिया का जल्दी से बात कर लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द फ्लिप्स. इन नदिया वी हैव लुक्ड एट कालीगंज, बपन घोष फ्रॉम बीजेपी एंड अलीफा अहमद फ्रॉम TMC. इट विल स्टे विद द TMC. व्हाई इज दिस?
1: देखिए आप वहां से चल रहे, ये ऊपर से नीचे से मैं जो इन्होंने कहा कि ये सुनामी वाला है, ऐसे भी हम लोगों ने क्या कहा जाता, 5 में से 3 दे रहे हैं बीजेपी को, 2 टफ फाइट में दिखा रहे हैं हम लोग दोनों सीट को. टफ फाइट में जब आप जाती हैं कि मैंने होता है हल्का एज मिलता है तो सीटें बदलते हुए हैं, और मैं कल भी ये बात बोला था कि जब कम मार्जिन वाली सीटें होती है तो जो पार्टी जीतती है ओवरऑल में उसके तरफ वो शिफ्ट होता है, वो बदलता है. तो ऐसा नहीं है कि ये सीटें नहीं चेंज होगी. मैं इनके बारे में जो अभी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है,
0: नहीं तो कालीगंज टफ फाइट है या
1: कालीगंज टफ फाइट है? नहीं
0: टफ फाइट है,
1: टफ फाइट है.
0: क्यों टफ फाइट है?
1: टफ फाइट इसलिए कि इंडियन इनकम्बेंसी तो दिख ही रहा ना, जो बात बार हम लोग कर रहे हैं
0: एंटी इनकम्बेंसी, इसका मेकअप क्या है नदिया में, ये कालीगंज सीट का क्या नेचर है, क्या ये रिजर्व सीट है, क्या ये हिंदू बाहुल सीट है, क्या इसका नेचर?
1: देखिए यहाँ पे भी मुसलमान ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये 54% है.
0: 54% तो क्या मुकाबला है? तो ऑब्वियसली TMC जीतेगी.
1: नहीं है, मैंने क्या कहा कि ये TMC का पिछला पोल और अभी के पोल में कितना चेंजेज आता है वो देखना होगा.
0: ओके, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस?
3: दिस इज अ सीट गोइंग टू द TMC. इफ यू आर टेलिंग मी दैट असेंबली इज विद ग्रेटर देन 50% मुस्लिम पॉपुलेशन आर समहाउ गोइंग टू बी वन बाय द बीजेपी, देन
0: लेट मी हियर. वन इट इज अ टफ कॉन्टेस्ट.
3: He is marked it to TMC. Then it's marked. I won't say it's a tough contest. It's going to the TMC.
0: It is TMC. All TMC. Sorry, sir. ये नहीं कोई tough contest है. यहाँ ये TMC को हम दे रहे हैं.
2: नहीं मुझे
0: कालीगंज जा रहा है TMC.
1: ये कालीगंज जा रहा है. लेकिन जिस तरीके से वहाँ से आप देखी होंगी लाइन इस बार, महिलाएं जिस तरह से खुल कर आई हिंदू का, तो वो वोट परसेंटेज घटाएंगे टीएमसी का वहां पे 100%.
3: दमदम की महिलाएं ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? व्हाई इज द बिहेवियर ऑफ द वुमेन देन? इफ द वुमेन आर मेकिंग दिस सीट अ टफ कंपटीशन, देन द वुमेन ऑफ दमदम एंड दमदम नॉर्थ शुड आल्सो मेक इट अ टफ कंपटीशन. दैट यूनिफॉर्मिटी शुड एग्जिस्ट अक्रॉस द स्टेट. इट शुड बी इन सिलेक्टिव सीट्स. My simple point is, in South 24 Parganas, one thing that will work in favor of the TMC is, despite all the differences within the party, the candidate dislike or like, they will lock, stock, barrel rally behind the TMC. Because if they look at, if you're saying that the Hindus look at it as an existential political contest, the Muslims are also thinking, boss, we also need to retain the power. So why should we divide our vote? We need to back the TMC. We need to back Mamata Banerjee.
0: Okay.
3: Why would they act differently?
0: Okay. Final point on Kaliganj.
2: No, I want to come to Baj Baj. Something very interesting. The BJP was a consistent third there. 2021 में भी मनोज जी BJP 44,000 वोट से हारी है.
1: हारी है वो.
2: तो अभी ये उम्मीद कहाँ से पैदा हो रही है बीजेपी के लिए?
1: देखिए जो छपाई वाला जो था ट्रेंड, इस बार छपाई तो नहीं हुआ है. लोग वोट दिए हैं, कड़ाई हुई है, और जब ये जब छापा वाला वोट कम होता है तो सीटों का जो मार्जिन जो उनका वोट परसेंटेज जो 54,000 का बता रहे हैं वो कम होगा, जब कम होता है ये चीजें तो दिखता है कि ये सीटें टफ फाइट में जा रही हैं। ये उस तरह से दिखता है,
2: डायरेक्ट इजी नहीं है, बीजेपी टफ फाइट है,
1: टफ फाइट में।
2: जस्ट वन थिंग फॉर आवर व्यूअर्स, एक्चुअली दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट इन द सुंदरबंस, अ लॉट ऑफ मार्शी लैंड्स, सो पीपल हैड टू वेयर लॉट ऑफ बूट्स एंड गो देयर, द ब्रिटिशर्स, द बूट्स मेड अ बज बज साउंड, सो द प्लेस गॉट द नेम
3: बज। दैट्स इंटरेस्टिंग।
0: Oh, what do you make of this?
3: Oh, that's an interesting factoid, I think.
0: I thought because the TMC refuses to budge from here. That's why it's called budge.
2: It's a nice attitude.
0: Yes, go on.
3: No, budge, I think the TMC will...
0: Budge going to TMC. Yeah. All right. Very quickly, so you are saying that this is not changing. Ye keh rahe hain ki TMC...
1: दूसरी बात बता रहे हैं. जब भी हम लोग ये करते हैं...
0: budge का makeup क्या है? क्या पॉपुलेशन क्या इनका ब्रेकअप है?
3: इट्स 39% मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रोक्सिमेटली,
0: 39% मुस्लिम।
1: लेकिन वहाँ पे इस बार जो महिलाएं निकल कर आई हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ महिलाएं काफी पोल की हैं, और 3.5% शायद उस इलेक्शन का विषय, 3.5% महिलाओं का पोल अधिक हुआ है। अभी ये है तो वैसे स्थिति में बीजेपी के लिए काफी अच्छा स्थिति है, क्योंकि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हो चाहे मुस्लिम पुरुष हो, पिछले बार वो पोल किए हैं,
0: नहीं, बट इस मुस्लिम बार महिला तो बीजेपी को वोट नहीं देगी।
1: मैं वही बता रहा हूँ,
0: महिलाओं में सिर्फ हिंदू महिलाएं आप कह रही हैं देंगे।
1: मैं वही बात बता रहा हूँ कि पिछली बार मुस्लिम महिलाएं तो उनको वोट की है, तो जो महिलाएं 3.5% ऊपर एवब की है जो पिछले के अपेक्षा में, तो वहां पे वो ले आकर सीट को वहां पे टफ माने क्या कहेगा जीतने में लेकर आ गई है। तो ऐसे स्थिति में हमको वेट करना चाहिए। दूसरी बात बता रहे, क्या होता है कि जब हम सीट बाय सीट हम लोग करते हैं डायरेक्शन, तो कभी होता है, आप याद रखिएगा, दिल्ली में सारे लोगों का यह था कि सौरव भारद्वाज जीतेंगे, लेकिन सौरव भारद्वाज हार गए और अतिशी जीत गई। तो यह चेंजेज होता है कि ये सीटों पे सीट वाइज, क्योंकि जब ओवरऑल हम जब करते हैं वहां पे जाकर एग्जिट पोल, तो हम सीट टू सीट नहीं करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो किसी विधानसभा में 50 भी आता है, किसी में 100 भी आता है, किसी में 200 भी आता है। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल वोट परसेंटेज जो आता है, जो कास्ट का वोट शेयर आता है, उसके हिसाब से फिर सीटों पे वो करते हैं।
0: ओके, तो अगर
1: दो तीन चेंज होता है,
0: ओके, दो तीन फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि अगर ये सीट चेंज होगी वो इसलिए क्योंकि महिलाएं ज्यादा आई हैं, मोर वुमेन हैव कम आउट टू वोट, एंड ओवरऑल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एंटी इनकंबेंसी एंड पोलराइजेशन, एंड द मुस्लिम्स आर जस्ट अबाउट एट 40%, सो It's not a Muslim majority seat. That's still
1: दूसरी बात बता दे रहे, sorry, आपको टोक रहा हूं। इस बार जो पिछले पोल है और इस बार में देखेंगे कि किसी किसी विधानसभा में 23% से ऊपर पोल गया है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो पोल बड़ा है वो 23% तक बड़ा है, 23% तक बड़ा है, तो कहां से गया?
0: Okay, so it's important to remember that South 24 Parganas also has seats now, which seem to be showing a trend for variety of reasons. Most importantly, the removing of fake voters, the increased turnout of women and polarization, and finally that you have a 60-40 population breakup, a religious breakup, which is why some seats seem to be favorable to the BJP, which may flip. We are saying that there are at least 3 seats here, 1 in Howrah Uttar and 2 in South 24 Parganas, which might flip, and Diamond Harbour could be close. Let's take a look now at our second last, and we'll go very quickly because there is so much to talk, but I think we also want to pack in as many seats as possible so that on Monday you know what to look out for. There is going to be a deluge of information. Just keep your eyes on these 37. We've now come to Murshidabad and we've selected 4 seats over here, and this is going to be the decider. We're saying that here in Murshidabad, you will have the BJP keeping its seat of Behrampur and the main Murshidabad seat, despite the fact, ये समझाइए कैसे मनोज जी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी मुझे लगा ये जीत रहे हैं बहरामपुर।
1: नहीं, अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के वोट को काट रहे हैं,
0: तो यानी कि बीजेपी का मार्जिन
1: बीजेपी के लिए होगा, और बीजेपी को जैसे हम मुर्शिदाबाद की बात करें, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं जिसमें से 20 ऑलरेडी टीएमसी जीती थी और 2 बीजेपी जीती थी। यहाँ पे बीजेपी को 2 सीट बढ़ने की उम्मीद की जा रही
0: है
1: मुर्शिदाबाद।
0: टोटल 20 में से इस बार वो 16
1: सीटें जीत सकते।
0: कौन सी 2 और सीटें जीत सकते?
1: तो बहरामपुर दिख ही रहे सामने आपको,
0: हाँ।
1: जो पिछली बार भी जीती थी ये था दो और
0: दो बढ़ रही हैं
1: तो उसका बैकअप अब
0: तो बहरामपुर और मुर्शिदाबाद ऑलरेडी उनके पास था हाँ। आप कह रहे हैं दो और सीटें आप जल्दी से देखिए कौन सी दो और सीटें बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग
1: मुर्शिदाबाद तक आप उनसे ले लीजिए मैं
2: आई जस्ट गिव यू अ फीचर ऑफ मुर्शिदाबाद पद्मजा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स अ वेरी मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट The two most prominent urban centers, which is Murshidabad and Behrampur themselves, have actually had a BJP winning candidate in 21, even in the Lok Sabha leads in 24.
0: Okay. So this is comfortably with the BJP.
2: The municipalities
0: then.
2: Or corporations remain with the BJP.
0: Okay.
2: Yeah, both of them. And okay. The rest of the district goes mostly with the...
0: Let's quickly talk about Domkal.
2: This Humayun Kabir is not the AJ UP guy, he's another guy.
0: He's the IPS officer.
2: Yeah.
0: So there are two Humayun Kabirs. One is a former IPS officer. TMC is going to keep this. Any thoughts on Reji Nagar and actually both of them have a Humayun Kabir. Reji Nagar is also where Humayun Kabir is contesting. Oh, we haven't even listed
2: Reji
0: him
2: Nagar
0: here.
2: Has
0: but it's going to be a tough contest.
2: Muslim voter.
0: Reji Nagar, by the way, is the seat where the so-called Babri Masjid is coming up. So that is what makes it a tough contest. So, Reji Nagar, tough contest, and TMC is going to keep Domkal. Any
3: thoughts? Reji Nagar, I won't say tough contest. It's 67% Muslim population.
0: Yeah, but Humayun Kabir is contesting there, no? So, you have a decentish Congress candidate also in Reji Nagar. Yeah. So, maybe he splits a little bit.
3: But again, I really don't fancy BJP's chances here, honestly.
0: Okay.
3: And in Domkal, I think it's not even a conversation we should have. It's a straight out TMC seat.
0: Why is that?
3: हाई मुस्लिम पॉपुलेशन 87%
0: आप बता रहे थे
1: अब जो सेकंड दो सीटें आप पूछ रहे
0: जो बीजेपी बढ़ा सकती है मुर्शिदाबाद
1: फरक्काबाद फरक्का है जहां पे पिछली बार टीएमसी जो है 60,000 के लगभग करीब वोटों से जीते
0: सर फरक्का है 70% मुस्लिम पॉपुलेशन
1: उसके बाद भी इस बार कांग्रेस वहां से वोट ले आ रही है वोटों में डिवीजन हो रहा है वहां
0: सर कैसे डिवीजन हो रहा है अगर हम कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम वोट एक तरफा होगा
1: तरफा नहीं हो रहा देखिए मुर्शिदाबाद में टीएमसी को लेकर काफी नाराजगी है मुर्शिदाबाद मालदा यहां पे जाएंगी आप तो वहां पे मुसलमानों के अंदर टीएमसी को लेकर काफी बुरा
0: आई अग्री वक्फ को लेकर के है आपकी ये बाबरी मस्जिद को लेकर के है बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फिर हमने जो डिस्कस किया कि अगर शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सनातन को बचाओ तो दूसरी तरफ भी तो टीएमसी कह रही है कि अपने को बचाओ एसआईआर से तो अगर हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है सनातन को बचाने के लिए तो मुस्लिम भी तो कंसोलिडेट होगा ना हमेशा रहा
1: था वो तो हमेशा रहा था इस बार उसको डिवीजन होते हुए
0: ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं दैट एक्चुअल डिवीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मुर्शिदाबाद एंड मालदा एंड उत्तर दिनाजपुर दैट going to change the story completely but I mean I think that is still a little up in the air let's take a look at these two seats in Malda and this I think is quite clear it is going to stay with the BJP simply yes. because Malda and English Bazaar are the Hindu pockets.
1: दूसरी बात बता दे रहे हैं हम लोग जाओ चीज को छोड़ पाए मुर्शिदाबाद एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद है और यहां पे वो 4 से 6 सीटों तक जीत सकती है ये वो कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा
0: तुषार डजंट डिसएग्री तुषार डजंट एग्री
3: कांग्रेस इज विनिंग 4 to 6 सीट्स इन मुर्शिदाबाद आई डोंट थिंक देन बीजेपी विल हैव अ प्रॉब्लम हिटिंग 160
1: तो
3: नहीं नहीं नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान टीएमसी से इतना नाराज है कि वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस की तरफ जाना है मुझे कैंडिडेट को देखना है फिर हिंदू तो और कितना नाराज होगा कि वो और प्रेसिडेंसी रीजन में बीजेपी को और बुरी बड़ी तरीके से जिताएगा ऑन मैथमेटिकल टर्म्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिंदू वोटर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द बीजेपी is higher than the Muslim voter going away from the TMC. अगर आप कह रहे हैं Muslim voter TMC की तरफ से जा रहा है, तो फिर हिंदू वोटर भी तो बीजेपी की तरफ आएगा ना?
1: हाँ तो आएगा तो वो तो मैं तो कहीं रखूं तो आएगा तो वोट डिवीजन के बाद तो हिंदू वोट तो एक तरफ आ ही रहा बीजेपी का
3: पर वो बाकी सीट्स पे भी लागू होता है फिर
1: वहां का जो था मालदा और मुर्शिदाबाद का अधीर रंजन का एक अपना पकड़ है और अब मुर्शिदाबाद में जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि मेरे गुरु अधीर रंजन जी है वो सिचुएशन के हिसाब से उनको उन्होंने खड़ा किया था और इस बार आप देखेंगे अधीर रंजन को पार्टी के सपोर्ट कम पब्लिक के बीच में जबकि वो अपना खुद को सीट हार रहे हैं बरामपुर सीट देखा जाए जहां से खड़े हुए हैं वो उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई
3: ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा और दूसरी पार्टी का कहीं इलेक्शन के बाद मिलने लग जाएगा
1: ऐसा हो सकता है
0: So let's not get ahead of ourselves. Let's see what happens after the election. Very quickly, I want to go to the next set. And I think we were looking at Cooch Behar, but I think we can safely skip this entirely. Cooch Behar, Alipurduar, Darjeeling. These are areas where the BJP has pretty much swept. And I think yahan pe it's no point really discussing. Let's go to the next set. Because these are, if there is one place where the BJP can confidently, and since I've traveled there, It is largely the demography, the past trends, SIR, deletion issues. It all points to the direction of the BJP. This, though, is going to be important. Now we've come to the Jangal Mahal area and Paschim Midnapur. Jhargram is going to stay with the TMC. Purulia is going to stay with the BJP. No surprises there. Bankura is going to stay with the BJP. Bankura mein problem nahi hai. BJP ke paas rahega.
1: वो बीजेपी माने मुझे लग रहा है कि बड़ा स्मूथली निकल
0: जाएगा। देखो ओवरऑल जंगल महल में बताइए कितने सीटें बीजेपी अपनी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज करेगी और क्यों?
1: मुझे तो लग रहा है कि जंगल महल इस बार ऐसा है कि बीजेपी को पूरी की पूरी सीट जीतनी चाहिए।
0: कितनी सीटें हैं वहाँ पे
1: करीब 7 सीटें हैं ना जंगल महल में, 6 या 7 सीट है।
0: नहीं, जंगल महल पूरा मिला करके नहीं, आपका ये बांकुरा पुरुलिया झारग्राम मिला करके देयर विल बी अबाउट 15 सीट्स एज फार एज आई नो। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके आप
1: उसको तो निकाल के हमको कलेक्शन,
0: आप कह रहे हैं कि 15 की 15 सीटें या पूरी इस डिस्ट्रिक्ट
1: में पूरी स्थिति है
0: वहां। क्यों क्यों
1: वहां पूरी तरह से बदल गया? और ऐसा भी नहीं,
0: मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितना मुझे याद है ये एक इलाका था जहाँ 2024 इलेक्शन में बीजेपी के लीड्स कम हुए थे, तो अब क्यों बदल गया?
1: 2024
0: बीजेपी डिड वेरी वेल इन द 2020 डिड वेरी वेल इन द 2014 इलेक्शन हियर सॉरी 2019 इलेक्शन हियर बट इन 2021 दे डिडंट डू वेल इन वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस देयर लीड्स वेंट डाउन। अब क्या बदला?
1: इस बार ट्राइबल के बीच में,
2: टू बी फेयर टू मनोज जी, ये बांकुड़ा जो सीट है वहां 2021 में 1500 का लीड था केवल बीजेपी का, वो it became 8% in 2024. So Bankura is some sort of a consolidation in favor of the BJP.
0: No, I'm not talking about the seat. I am saying, Manoji has said that entire Jangal Mahal, the whole tribal belt could swing in the direction of the BJP. My question is, why? What are the factors?
2: इसका हम थोड़ा background देते हैं। 19 में, इधर political anecdote है, 19 में BJP swept this entire region in the Lok Sabha. What happened after that is there was post-poll violence. And there were murmurs that the BJP from the central government could not do much to help their own karyakartas there. So the performance went down in the next election, which was 21. However, by 24, the BJP seems to have recovered the confidence of its karyakartas and built more in 26 from where his numbers could be coming.
0: Okay, another interesting factor is that there are a number of, for example, it's a very emotive issue. You've got a number of tribes there, right? So you've got the Santhals and then you've got the Kudmi tribe. Now, Santhals are perceived within the tribal community to be cornering most of the benefits. The BJP this time has made an outreach to the Kudmis and has even fielded two of the people from this tribal community. And they're hoping that in Purulia and in Jhargram, they are going to make gains.
1: अमित शाह जी ने बोला कुर्मी समाज बहुत दिनों से एक डिमांड कर रहा कि मुझे भी ट्राइबल में शामिल
2: कीजिए,
1: और इस बार उन्होंने जाकर बोला कि मैं ही दे सकता हूं आपको।
0: और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ, कुडमी समाज, दिस कुडमी ट्राइबल्स, दे हैड वन टाइम स्टॉप्ड द रोड व्हेन अभिषेक बैनर्जीज कॉन्वॉय वाज पासिंग, सो दे हैड ब्लॉकेडेड द रोड एंड मेनी पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर अरेस्टेड, सो देर इज एंगर इन द कुडमीज एंड कैपिटलाइजिंग ऑन दैट द बीजेपी हैज फील्डेड एट लीस्ट टू कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर quite sizable in few seats may benefit them. Let's quickly go to our last. I want to quickly say Kharagpur Sadar Dilip Ghosh jeetenge, theek hai wo jeetenge. Okay, let's go to Asansol. Paschim Bardhaman we had seen, Asansol South we had Agni Mitra Paul. I think she is quite comfortable.
1: ye sara comfortable hai, yahan pe bihari bahut sare hain, aapko ye sara area mein hai, aur yahan pe jo bhadro log ki baat karte hain yahan pe unki pakad kam hai.
0: Ye Birbhum ki kahani bataiye, ye flip kyu kar raha hai, Rampur Hat kyu flip kar raha hai, ये टीएमसी से बीजेपी में क्यों जा रहा
1: है? शिफ्ट वो एंटी इनकमेंसी वाला जो है, कास्ट वाला है सिचुएशन, जो पिछली बार के तरफ इस बार जो चेंजेज है उसी का वो है।
0: ओके, सो वी हैव डन विद द 37 सीट्स दैट ऑल ऑफ अस एंड मोस्टली मनोज जी हैज शॉर्टलिस्टेड एंड decided that these are going to be the seats. If you look out for the results here, you will pretty much be able to gauge the direction. Now look, if in Malda Murshidabad you see the seats turning from the TMC to any other party, the Congress, the BJP, Humayun Kabir, that means that Muslim consolidation hasn't taken place in the nature that it was, you know, thought, and which means that the only party which will suffer will be the TMC. If there is even one seat that is lesser than their existing tally in the north, in Cooch Bihar, Alipurduar, Darjeeling, Siliguri, then the BJP is far from increasing their tally, they are possibly going to lose this election.
2: Yes.
0: And And if you don't see any seats being flipped in the Kolkata region, in not 24 Parganas, it has to be, you know, a 3:4. 75% BJP has
3: watch
0: to win.
3: Watch out for not 24 Parganas if it's not flipping towards the BJP.
0: And Jangal Mahal.
3: Not 24 Parganas alone is enough. Okay. Because the magic number of 148 warrants that the BJP has to get all its math right across certain districts.
0: All right. So we...
1: Parganas, ek batana cha raha
0: hu. Sir, 30 seconds. Jaldi bol diji.
1: Usse bhi kam lunga. Char district, 5 district aise the jahan pe BJP khata nahi khul pai thi. Abhi koi aisi district nahi hai jahan pe BJP ka khata nahi khulega.
0: Aapke hisab se.
1: Ji, mere hisab se.
0: Okay.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: India's unshakable news habit.

0: companion voting abuse, unauthorized people there entering voting compartments and multiple individuals voting, all of them together, breaching secrecy norms. And also the Election Commission has ordered for re-polling, and this was going to be taking place on the 21st of this month. TMC MP from Diamond Harbour, Abhishek Banerjee, has slammed the decision of the Election Commission to conduct re-polling. Meanwhile, the locals have alleged intimidation and threats by TMC cadres. NDTV has accessed the EC report on poll irregularities. What we also have learned is that three TMC workers have been arrested so far amid ongoing protests by residents.
1: देखिए ये लोग तो सिक्योर्ड है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता सिक्योर्ड नहीं रहेंगे। तृणमूल का भीतर ही इतना अंदरूनी लड़ाई है पैसा लेकर के, जी अगर सरकार बदलने का साथ साथ ही तृणमूल को मारना चालू करेगा, इसको रोकना पड़ेगा। पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 95% तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और जो विक्टिम का परिवार है उसका कहना है हम लोग CBI का जांच चाहते हैं, पुलिस का ऊपर CID के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। कारण यह है जो सभी लोगों का कहना ही है, जिसमें कोई विपक्ष का रोल नहीं है, तृणमूल ही तृणमूल को मारा। लेकिन नया सरकार को आने दीजिए, वो सरकार संभाल लेगा।
2: फलतार TMC राज में कभी सही वोटिंग नहीं होता है, वो जितने हिंदू गांव है वो डरा के वोट से वो विरत रखते हमेशा, वोटिंग करने के हक ही नहीं, वोटिंग करे तो TMC का ही देना पड़ेगा, ऐसा माहौल है, बहुत दिन से ऐसे चल रहा है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा ठोस कदम उठाया, तो इसलिए जनता का आशा वो जागरूक हुआ, वो हम वोट डालेंगे। लेकिन ऐसा डरा के वोट से विरत तो रखा, तो इसलिए फिर चुनाव होने के लिए जो इलेक्शन कमीशन बोला जो 21 मई को फिर वोटिंग होगा, 23 को काउंटिंग होगा।
3: ये बाकी जगह में चुनाव साफ सुथरा हुआ, किसी जगह से कोई कंप्लेन नहीं आया, लेकिन फलता में अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग, जहांगीर खान का माफी गुंडा लोग, वो लोग बहुत दिन से, सालों साल से वहीं पर हिंदू लोग और जो BJP को वोट देना चाहते हैं उसको वोट डालने नहीं देते। खुद वो लोग बूथ को कब्जा करके इतना दिन चुनाव किया, सालों सालों बहुत लोग वोट नहीं दे पाया। इस बार पहला बार जब वोट देने का मौका आया, ये लोग देखा गुंडागर्दी कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने बटम में आतुर लगा के, इन्होंने सेलोटेप EVM में लगा के, और जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा है उसको घुमा के इलेक्शन को इन्होंने साफ सुथरा होने नहीं दिया।
4: वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया, भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है।
5: अरे कुछ भी कर ले, सर्टिफिकेट तक बैठे रहो, दूसरे दिन सुबह तक बैठे रहो, मिलना क्या है, जितने कोई संभावना नहीं है, खाली अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब ममता बनर्जी बोल रही है, नहीं तो कोई काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है TMC का।
6: अकॉर्डिंग टू अस नॉट ए हैप्पी डिसीजन, वाई अलोन फलता वुड बी आइसोलेटेड एंड इलेक्शन हेल्ड देयर अगेन इज नॉट क्लियर टू अस। एनीवे वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इलेक्शंस आर हेल्ड, वी पार्टिसिपेट।
7: इस सीट पर रीपोल हो रहा है, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया, कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं चुनाव आयोग?
8: देखिए हम लोग पार्टी से डिमांड किया था 150 सीट का डिमांड किया था, फिर उसको ये करके, बट सुब्रत गुप्त जो स्पेशल ऑब्जर्वर आया था डायमंड हार्बर में, वो बोला था हम स्क्रूटनी करेंगे, फिर आप लोग का जो डिमांड है, हम लोग डिमांड किए थे जो 60 से 70 बूथ में वो सेलोटेप लगा दिया था, और 50 से 60 बूथ में और ये आतोड़ जो होता है ना, आतोड़ लगा दिया था, कुछ बूथ में से CCTV जो कैमरा था वो घुमा दिया, घुड़ा दिया था, कुछ नहीं था, बंद था वो, ऐसे हमको बोला था। पिटीशन जब दिए थे, ऑब्जेक्शन दिए थे जो 150 सीट में पुनर्निर्वाचन के लिए,
7: पहले भी TMC करती थी कि इंक लगा दिया या फिर
8: इतर लगा दिया, फलता ऐसे ही चलता था। और इस बार बीजेपी पूरा वहाँ पर एकदम फाइट करके वहाँ पर चला। और
7: रीपोल होगा तो आपको आपको उम्मीद है कि आप जीतेंगे?
8: अरे रीपोल होगा तो एक लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, ये लोग जमानत चला जाएगा।
7: मैंने देखा कि टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं उनके करीबी इसराफिल चौकीदार लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं।
8: ऐसे इसराफिल चौकीदार और उसका जो टीम है और भी है वहाँ, साइदुल है, महबूब है और लालटू है, सब ऐसे जेके टीम का और जो टीम का हिस्सा है, इस लोग ऐसे ही करता है, धमकाता है, डराता है, मारता है, पीटता है, उठा के ले जाता है और धमक भी देता है।
0: Now tensions flared in the state of West Bengal just days before counting with violence and fresh allegations of voter intimidation. Clashes that broke out between the workers of the TMC and the BJP during repolling in South 24 Parganas. At the same time, a new political flashpoint has emerged over strong room security, with both sides trading charges of irregularities. Here are the details.
9: Fresh tensions erupted in South 24 Parganas between the supporters of the TMC and BJP during repolling at 15 booths. The repoll ordered by the Election Commission of India over alleged irregularities covered 11 booths in Magarhat Paschim and 4 in Diamond Harbour. Voting began peacefully in the morning, but tensions escalated later in the day. The clashes come amid serious allegations from residents in Falta who claim intimidation and threats ahead of the counting day.
10: প্রতি রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পাচ্ছি না, কোনো নিরাপত্তা পাচ্ছি না, গিয়ে হুমকি দেখাচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, একে বলছে এই করব, ওকে বলছে তুলে নিয়ে যাব, ওকে বলছে মেরে দেব, ওকে বলছে ঘর জ্বালিয়ে দেব।
11: টিএমসি যদি জেতে এখানটায় বাচ্চা বুড়োকে পৌঁছাবে, বাচ্চাদের বলে পৌঁছাবে বলেছে আমাদেরকে,
12: বলছে যে আমাদেরকে বিজেপিতে ভোট দিয়েছো কি না বলো, বিজেপিতে দিলে তাহলে মানে আমাদের বাড়িতে থাকতেই দেবে না, বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসছে।
9: Shockingly, some voters claiming support for the ruling party say they were not spared either.
11: हम लोगों ने उनको ही वोट दिया था, फिर से उन्होंने हम पर ही हमला किया, उनको ही टीएमसी को वोट दिया था, टीएमसी के वोट दिया था, फिर क्यों हम पर हमला किया, क्यों हमला किया, हमको काट रहा है, मार रहा है, क्यों?
9: A parallel controversy is also brewing over strong room security. The Trinamool Congress has alleged irregularities in handling postal ballots at Khudiram Anushilan Kendra, while the BJP has claimed that an EVM strong room was opened without authorization, triggering an inquiry. With counting just hours away, political temperatures are clearly soaring in Bengal. Bureau Report, NDTV.
0: Let's get you break news coming in, and this is in regard to the poll-bound state of Tamil Nadu. Do remember, counting that's taking place tomorrow. This is the ruling DMK seeking preventive measures by the Tamil Nadu DGP, apprehending disruptions at counting centres by the BJP and other parties, demanding deployment of adequate security and coordination with security agencies to avert any untoward incident. This is an allegation that is being rejected by the BJP. Let's listen it to what's being said here.
13: Law and order should be maintained. BJP, as you know, they are, according to the news reported in the social media, they are planning to do so many things, because DMK is definite to form government. MK Stalin is going to become the chief minister of Tamil Nadu. That has been already decided by the people of Tamil Nadu. At the last moment, with the help of the election commission, BJP may do or play their foul game. So we should not be a prey to it. So precautionally, DMK legal wing has given a complaint to the election commission.
0: Vijay, my colleague joining us from Tamil Nadu to get us the very latest. Vijay, just hours to go before counting. And these were concerns that were raised by the TBK in the first place in regard to the law and order situation with Tamil Nadu, requests that were made to the Election Commission of India. And here we have the DMK doing the same now.
14: That's right. Divya, we even asked the same question to DMK Organizing Secretary R.S. Bharati about the complaint made by the Tamilaga Vetri Kalagam General Secretary Adav Arjuna yesterday. But R.S. Bharati said they are not bothered about TVK, just they are expressing their concerns toward, with the Election Commission of India. Mainly, R.S. Bharati has written a letter to Election Commission of India CEO Archana Patnaik saying that BJP might create issues during counting center, which we able to see across social media. So they are expressing their concern. They are urging ECI to instruct Tamil Nadu DGP to deploy adequate security measures during counting center. But the BJP denies those allegations, saying that DMK is doing unnecessary thing. As we speak, even ADMK, on behalf of ADMK, Rajya Sabha MP Inbadurai on his way to Tamil Nadu Secretary to meet ECI CEO Archana Patnaik to register a complaint. Likely, he will also address the press very shortly. But all the parties, Tamilaga Vetri Kalagam, ADMK and DMK, have registered complaint with Election Commission of India. But however, all parties are saying that blaming each other. Tomorrow, we'll get a clear picture during counting center. ECI also taking all adequate measures to avoid any untoward incidents.
0: Okay, for getting us those very details. Now, as you know, Vijay was mentioning, all of this is going to be taking place tomorrow. But what about the biggest X factor when it comes to this election in the state of Tamil Nadu? We're talking about all eyes are on actor-turned-politician Vijay. The TVK chief is drawing rare praise now from across the political spectrum. Both allies and rivals are taking note of his growing presence. From being called a force to reckon with to predictions of surpassing results, there's a clear buzz around his impact. So as Tamil Nadu votes are being counted, the big question really is, can Vijay convert star power into real electoral numbers? Here we have all the details you need to know.
15: In a state long dominated by Dravidian majors, Vijay's entry has disrupted the script. With strong youth connect and appeal among women voters, his political plunge is already making waves. And now a surprising endorsement has come from within the ruling camp. MDMK Chief Vaiko, an ally of Chief Minister M.K. Stalin, has called TVK a force to reckon with, even hinting at surprising results.
16: TVK will be a force to reckon with, and it may produce surprises when the results are declared. There is a possibility, there is a swing among the students and first-time voters in favor of TVK.
15: Congress MP Manikam Tagore too acknowledged Vijay's popularity among youth and women voters.
17: I had always been saying that Mr. Vijay will have a huge impact, and Mr. Vijay is a popular figure in Tamil Nadu, and we saw a lot of young and women voters being in his rallies and others, and therefore he will have a huge impact.
15: Yet, BCK Chief Thol Thiruma Valavan offered a reality check, saying Vijay may dent both DMK and AIADMK vote banks, but lacks the capacity to capture power.
18: புதிதாக களம் காணுகிற தமிழக வெற்றி கழகம் திமுக அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எதிரான வாக்குகளை பெருவாரியாக பிரித்து கொள்ள இருக்கிறார். ஆனால் தனித்த ஒரு சக்தியாக அவர் திமுக அதிமுக அல்லது திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி ஆகிய இரண்டு கூட்டணிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளி ஆட்சியை கைப்பற்றும் அளவுக்கான வலிமையை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை.
15: Adding a cultural dimension to the political buzz, legendary composer Ilaiyaraja set social media abuzz with a nostalgic post featuring a young Vijay from the film Idu Engal Needi. The song's evocative line, Chinna Thambi Unnai Nambi Indanadu, loosely translating to "The state waits for you, little brother," has been widely seen by supporters as symbolic backing at a crucial moment. Vijay's entry has reignited comparisons with icons like M.G. Ramachandran and J. Jayalalitha, leaders who successfully bridged cinema and politics. Even as past attempts by stars like Kamal Hassan and Vijayakanth saw limited electoral success. A majority of exit poll results suggest a second term for the ruling DMK. With the counting day approaching, the big question remains, can Vijay translate fan following into votes at scale? In Chennai, Sam Daniel, Find It TV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: India's unshakable news habit.

0: West Bengal Chief Minister claims 200 plus seats. There's BJP that is also exuding confidence, and that is in the state, while Falta will head into repolling on the 21st of May. Results for the rest of the seats will be announced on Monday, with just one day left for West Bengal's assembly election results. We're talking about 15 hours to go. All BJP candidates will visit temples in their respective constituencies to offer prayers. Additionally, we have women supporters who will stage their sit-in protests at strong rooms across all assemblies segments to safeguard the EVMs. TMC has claimed that the BJP is manipulating polls. We have TMC workers alleging that a white car with a BJP logo was allowed to enter a strong room without any checks, you know, that took place. This all happened in Kolkata.
1: बहुत अच्छा सा चेकिंग चल रहा था, लेकिन अचानक होता है क्या कि एक एक्स आर्मी का गाड़ी आता है, स्कॉर्पियो, जो गाड़ी का नंबर 8099, और उसके पीछे एक डिजायर गाड़ी रहता है, सिर्फ डिजायर वो रहता है। उसके डेक्स बोर्ड के ऊपर पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। वो गाड़ी विदाउट चेकिंग सीधा स्ट्रांग रूम के तरफ जाता है। स्ट्रांग रूम के तरफ में वहाँ पे रुकता है। गाड़ी रुकने के बाद वहाँ से तीन लोग उतरते हैं, उतर के स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हैं।
2: मैंने आपको कोई लाल आंख दिखाए तो फिर उसका प्रतिवाद करना, अरे भाई ये कोई कोई बात है, कौन किसके पॉलिटिकल वर्कर के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो अब वो लोग यहाँ 12 बजे से लेडीज़ विंग जो है हर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठेगी और प्रोटेस्ट करेगी, किस विषय का प्रोटेस्ट मालूम नहीं। तो एक दिशाहीन जो एक बात वो लोग रखते हैं, एक क्या है कि कॉपी करने की कोशिश में, लेकिन वो और कुछ दिखाता है, दिशा जो है और कुछ दिखाता है। क्योंकि यहाँ अब आप सबको, मैंने आपके वर्कर्स को प्रेरणा दीजिए, लेकिन भड़काने की कोशिश में। अच्छा, मैं
3: भारत किसी एक का तो नहीं है, सबका है। भारत में किसी भी प्रांत से कोई भी यहाँ पे काम के लिए आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है। अब दिल्ली में IIT है, उसका डायरेक्टर बंगाली है, तो वहाँ के लोग अगर बोलना शुरू कर देंगे दिल्ली के IIT में डायरेक्टर क्यों बंगाली रहेगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बंगाली बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे ये पूरा भारत एक है, यहाँ पे गुजराती बंगाली सब मिलके रहते हैं। भवानीपुर में भी गुजराती रहते हैं, सालों से रहते हैं, 50 सालों से, 2 जनरेशन हो गए, 3 जनरेशन हो गए, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाली हो जाएगी।
4: जो पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम है उसके अंदर कोई सीसी कैमरा नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग में बाहर जो स्क्रीन है वहां पर स्ट्रांग रूम का अंदर का कैमरा का कोई स्क्रीन नहीं था। तो हम लोग पॉइंट आउट किया, वो इंस्टॉल किया, तो हम वही देखने आए थे। हमारा अब आज जब मूवमेंट हुआ अंदर में, तो हमारा एजेंट आयन चक्रवर्ती अंदर में था और हम लोग बाहर से ये स्क्रीन से हम चेक कर लिया। जो प्रॉब्लम था हम लोग पॉइंट आउट किया, उस दिन पॉइंट आउट किया, स्ट्रांग रूम के सामने हम लोग धरना में बैठ गया था, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, CCTV लग गया, अभी वो लोग नौटंकी करने चला।
5: देखिए हम तो चाहे कि जिस तरीके के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में लोग शामिल हुए थे, मतदान किए थे, उस तरह शांतिपूर्ण तरीके से ये इसका नतीजा निकले और जो हारे जो जीते ये आम जनता के फैसला है, उसको मान लेना चाहिए सबको, ये मैं जरूर कहूँगा। कोई तनाव, कोई हिंसा, कोई खून खराबा ना हो, ये मैं जरूर चाहूँगा। लेकिन जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कहे जाते हैं कि गिनती के समय हर जगह डंडा और झंडा लेके खड़ा रहना चाहिए, इसमें कोई नापाक इरादे रह भी सकते हैं। ये नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए कोई घटना, मतलब कोई तनावपूर्ण घटना हो भी सकते हैं।
6: देखिए ममता बनर्जी का अभी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे घट रही है। ममता बनर्जी के इंटेलिजेंस जितना जितना जैसे जैसे खबर इनको मिल रहे उतना ही इनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे आ रहे। इसका जो बॉडी लैंग्वेज, इनका जो बोलने का तरीका और जो उनका जो शैली, चेहरा, फेशियल अपीयरेंस, टोटल इसको प्रमाण हो रहा है कि ममता बनर्जी खुद घबरे गई है। और इनका एंटी इनकम्बेंसी लेवल इतना हाई कि इसका कारण वोटिंग परसेंटेज देख के उनका दिमाग पूरा खराब हो गया है। किसी भी सरकार सत्ता पे रहने के बाद, तीन टर्म रहने के बाद, जब वोटिंग परसेंटेज इतना हाई लेवल पे पहुंचते हैं और इसमें परिवर्तन के जब लहर चलते हैं, तब कोई मार्जिनल ग्राउंड पे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाते हैं।
7: देखिए तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया, ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था, इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वेबकास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है, और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया, उसका छानबीन चल रहा है।
3: इस बार बहुत दिनों के बाद चूंकि लोग वोट डाले हैं, इसलिए आप देखो बड़े बड़े पोल पंडित भी नहीं बोल पाएंगे, जो एग्जिट पोलर चाहे जो भी हो, चूंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस देख करके बोलते हैं। तो इस बार एसआईआर के माहौल में और उसके बाद नए वोटर्स आए हैं और बहुत से लोग जो 15 साल से वोट डाले नहीं है, डालने दिया नहीं गया, वो वोट डाले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरप्राइजिंग होगा रिजल्ट, और खास करके जो कंटेंडर मेनली बीजेपी और टीएमसी के, इतने ड्रामाबाजी आप देख रहे हो, वो गणना के बाद क्या सूरत हाल होगा उन्हें नहीं मालूम है, बल्कि अपने अपने भाष्य पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।
0: A little over 15 hours to go before counting starts in Tamil Nadu's assembly polls. Political temperatures are soaring in the state. With all parties flexing muscle ahead of the verdict, the question really remains, who will Tamil Nadu pick? Ahead of that counting, a war of words has erupted. We have the DMK leader there, saying that the party will win and form the government once again, slamming the AIADMK-BJP alliance. The DMK leader terming the parties as anti-law, anti-democracy, saying that the TVK would not get even 5 seats. Meanwhile, AIADMK leader Satyan has slammed the party, saying that the party lacked

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: हाई वोल्टेज इलेक्शन सर्विस करो 9% सुनामी। You're watching NDTV's coverage of the exit polls. We are focusing now on West Bengal. Chanakya is very clearly predicting that the Bharatiya Janata Party is likely to romp home in style in Kolkata.

अगर बोलना शुरू कर दे कि दिल्ली के IIT में डायरेक्टर क्यों बंगाली रहेगा, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बंगाली बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे पूरा भारत एक है, यहाँ पे गुजराती बंगाली सब मिलके रहते हैं, भवानीपुर में भी गुजराती रहते हैं, सालों से रहते हैं, 50 सालों से, 2 जनरेशन हो गए, 3 जनरेशन हो गए, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतिहास खंगालने जाएंगे।

0: In Falta South 24 Parganas, the Election Commission's inquiry has been concluded and NDTV has accessed the EC report on poll irregularities in Falta. As per the report, multiple violations including unauthorized persons entering the voting compartments, EC has ordered for repolling and repoll will be held on the 21st of May 2026. TMC MP from Diamond Harbour, Abhishek Banerjee, has slammed the decision of the Election Commission to conduct repolling. Bengal Leader of Opposition, on the other hand, claims that the election officers were disclosing information about counting day developments at the behest of politically titled organizations and the locals' alleged intimidation and threats by TMC. We have also accessed EC report on poll irregularities in Falta. Three TMC workers have also been arrested.
1: Seat par re-poll ho raha hai, Chunav Aayog ne ye faisla liya hai. Kaise aap is faisle ko dekh rahe hain, Chunav Aayog?
2: Dekhiye, hum log party se demand kiya tha 150 seat ka demand kiya tha, fir usko ek kar kar ke. बट सुब्रत गुप्त जो स्पेशल ऑब्जर्वर आया था डायमंड हमार में, वो बोला था हम स्क्रूटनी करेंगे, फिर आप लोग का जो डिमांड है, हम लोग डिमांड किए थे जो एक 60 से 70 बूथ में वो सेलो टेप लगा दिया था और 50 बूथ में 50 से 60 बूथ में और एक आतोड़ जो होता है ना आतोड़ लगा दिया था, कुछ बूथ में से CCTV जो कैमरा था वो घुड़ा दिया था, कुछ नहीं था, बंद था वो. ऐसे हमको बोला पिटीशन जब दिए थे, ऑब्जेक्शन दिए थे जो 150 सीट में पुनः निर्वाचन के लिए.
3: वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है.
4: ये बाकी जगह में चुनाव साफ सुथरा हुआ, किसी जगह से कोई कंप्लेन नहीं आया, लेकिन फलता में अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग, जहांगीर खान का माफी गुंडा लोग, वो लोग बहुत दिन से, सालों साल से वहीं पर हिंदू लोग और जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं उसको वोट डालने नहीं देते. खुद वो लोग बूथ को कब्जा करके इतना दिन चुनाव किया, सालों सालों बहुत लोग वोट नहीं दे पाया. इस बार पहला बार जब वोट देने का मौका आया, ये लोग देखा गुंडागर्दी कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने बटम में आतोर लगा के, इन्होंने सेलो टेप EVM में लगा के और जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा है उसको घुमा के इलेक्शन को इन्होंने साफ सुथरा होने नहीं दिया.
5: पोस्ट पोल वायलेंस को आप कैसे देखते हैं? दिस इज ए हिस्ट्री ऑफ बंगाल इलेक्शंस. बंगाल इलेक्शंस में हर समय होते हुए आ रहा है. इस बार
6: हम लोग सारे कार्यकर्ता को लेकर के पूरा समाज के सामने ये बात रखा, ये पश्चिम बंगाल की ये पोस्ट पोल वायलेंस का जो कल्चर है इसमें बदलाव लाना चाहिए, इससे मुक्ति चाहिए. तो हमारा कार्यकर्ता भी पिछले 2021 का बाद भूल जाए, कानून कानून का रास्ते में चल रहे हैं, जो कुछ होना है कानून का माध्यम से ही होगा, कोई कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है, किसी भी हिंसा हमारा तरफ से नहीं होगा, ये हम आश्वस्त करते हैं.
5: फलता में जो रीपोलिंग का वापस रीपोलिंग हो रहा है,
6: रीपोलिंग हुआ ये चुनाव आयोग का फैसला है. उधर चुनाव का नाम में क्या चलता था इतने दिन, उधर महिलाएं अगर रास्ते में बोल रहे हैं वो लोग ही बता सकते हैं, हम क्या बोलेंगे.
5: अभिषेक बैनर्जी ने डायमंड हार्बर मॉडल की बात करी है और चुनौती दी है कि अगर किसी में दम है तो वहाँ से आके कंटेस्ट करें.
6: अगर कोई आसमान की तरफ जाकर चुनौती दे दे वरुण देवता को तो क्या किया जाए. हम अगर माइक टाइसन को बोला चुनौती दे दे आओ लड़ो हमसे, वो क्या बोलेंगे. तो उसका चुनौती
7: कुछ भी कर ले, सर्टिफिकेट तक तो बैठे रहो, दूसरे दिन सुबह तक तो बैठे रहो, मिलना क्या है, जितने कोई संभावना नहीं है, खाली अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब ममता बनर्जी बोल रही है, नहीं तो कोई काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है TMC का.
8: अकॉर्डिंग टू अस नॉट ए हैप्पी डिसीजन. वाई अलोन फलता वुड बी आइसोलेटेड एंड इलेक्शन हेल्ड देयर अगेन इज नॉट क्लियर टू अस. एनीवे वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इलेक्शन आर हेल्ड, वी पार्टिसिपेट इन.
9: फलता TMC राज में कभी सही भटिंग नहीं होता है. वो जितने हिंदू गांव है वो डरा के वोट से वो विरत रखते हमेशा, वोटिंग करने के हक ही नहीं, वोटिंग करे तो TMC का ही देना पड़ेगा, ऐसा माहौल है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है. तो इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा ठोस कदम उठाया, तो इसलिए जनता का आशा वो जागरूक हुआ, वो हम वोट डालेंगे। लेकिन ऐसा डरा के वोट से विरत तो रखा, तो इसलिए फिर चुनाव होने के लिए जो इलेक्शन कमीशन बोला जो 21 मई को फिर वोटिंग होगा, 23 को काउंटिंग होगा।
0: And just a few hours to go before the counting for the votes begin in Bengal, while West Bengal Chief Minister claims 200 plus seats, BJP's confidence of Parivartan in the state. While Falta will head to repolling on the 21st of May, results for the rest of the seats will be announced on Monday. With just one day left for West Bengal Assembly election results, all BJP candidates will visit temples in their respective constituencies to offer their prayers. Additionally, women supporters will stage a sit-in protest at strong rooms across all assembly segments to safeguard the EVMs. TMC has claimed that BJP is manipulating polls. TMC workers allege that a white car with a BJP logo was allowed to enter a strong room without any checking in Kolkata.
10: अच्छा सा चेकिंग चल रहा था, लेकिन अचानक होता है क्या कि एक एक्स आर्मी का गाड़ी आता है, स्कॉर्पियो, जो गाड़ी का नंबर 8099, और उसके पीछे एक डिजायर गाड़ी रहता है, सिर्फ डिजायर वो रहता है। उसके डैशबोर्ड के ऊपर पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। वो गाड़ी विदाउट चेकिंग सीधा स्ट्रांग रूम के तरफ जाता है, स्ट्रांग रूम के तरफ में वहाँ पे रुकता है। गाड़ी रुकने के बाद वहाँ से तीन लोग उतरते हैं, उतर के स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हैं।
11: मैंने आपको कोई लाल आंख दिखाए तो फिर उसका प्रतिवाद करना, रे भाई ये कोई बात है? कौन किसके पॉलिटिकल वर्कर के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो अब वो लोग यहाँ 12 बजे से लेडीज विंग जो है हर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठेगी और प्रोटेस्ट करेगी। किस विषय का प्रोटेस्ट मालूम नहीं। तो एक दिशाहीन जो एक बात वो लोग रखते हैं, एक क्या है कि कॉपी करने की कोशिश में, लेकिन वो और कुछ दिखाता है, दिशा जो है और कुछ दिखाता है। क्योंकि यहाँ अब आप सबको माने आपके वर्कर्स को प्रेरणा दीजिए, लेकिन भड़काने की कोशिश में। अच्छा,
12: भारत किसी एक का तो नहीं है, सबका है। भारत में किसी भी प्रांत से कोई भी यहाँ पे काम के लिए आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है। अब दिल्ली में IIT है, उसका डायरेक्टर बंगाली है, तो वहाँ के लोग अगर बोलना शुरू कर देंगे दिल्ली के IIT में डायरेक्टर क्यों बंगाली रहेगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बंगाली बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे ये पूरा भारत एक है, यहाँ पे गुजराती बंगाली सब मिलके रहते हैं। भवानीपुर में भी गुजराती रहते हैं, सालों से रहते हैं, 50 सालों से, 2 जनरेशन हो गए, 3 जनरेशन हो गए, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाली हो जाएगी।
6: जो पोस्टल बैलॉट का स्ट्रांग रूम है उसके अंदर कोई सीसी कैमरा नहीं था। लाइव स्ट्रीमिंग में बाहर जो स्क्रीन है वहां पर स्ट्रांग रूम का अंदर का कैमरा का कोई स्क्रीन नहीं था। तो हम लोग पॉइंट आउट किया, वो इंस्टॉल किया, तो हम वही देखने आए थे। हमारा अब आज जब मूवमेंट हुआ अंदर में, तो हमारा एजेंट आयन चक्रवर्ती अंदर में था और हम लोग बाहर से ये स्क्रीन से हम चेक कर लिया। जो प्रॉब्लम था हम लोग पॉइंट आउट किया, उस दिन पॉइंट आउट किया, स्ट्रांग रूम के सामने हम लोग धरना में बैठ गया था। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, CCTV लग गया, अभी वो लोग नौटंकी करने चला।
13: देखिए, हम तो चाहे कि जिस तरीके की शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में लोग शामिल हुए थे, मतदान किए थे, उस तरह शांतिपूर्ण तरीके से ये इसका नतीजा निकले और जो हारे जो जीते ये आम जनता के फैसला है, उसको मान लेना चाहिए सबको। ये मैं जरूर कहूँगा, कोई तनाव, कोई हिंसा, कोई खून खराबा ना हो, ये मैं जरूर चाहूँगा। लेकिन जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कहे जाते हैं कि गिनती के समय हर जगह डंडा और झंडा लेके खड़ा रहना चाहिए, इसमें कोई नापाक इरादे रह भी सकते हैं। ये नापाक इरादे को नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए कोई घटना, मतलब कोई तनावपूर्ण घटना हो भी सकते हैं।
14: देखिए, ममता बनर्जी का अभी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे घट रही है। ममता बनर्जी के इंटेलिजेंस जितना जितना जैसे जैसे खबर इनको मिल रहे उतना ही इनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे आ रहे। इसका जो बॉडी लैंग्वेज, इनका जो बोलने का तरीका और जो उनका जो शैली, चेहरा, फेशियल अपीयरेंस, टोटल इसको प्रमाण हो रहा है कि ममता बनर्जी खुद घबरे गई हैं। और इनका एंटी इनकम्बेंसी लेवल इतना हाई कि इसका कारण वोटिंग परसेंटेज देख के इनका दिमाग पूरा खराब हो गया है। किसी भी सरकार सत्ता पे रहने के बाद, तीन टर्म रहने के बाद, जब वोटिंग परसेंटेज इतना हाई लेवल पे पहुंचते हैं और इसमें परिवर्तन के जब लहर चलते हैं, तब को सिर्फ मार्जिनल ग्राउंड पे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाते हैं।
4: देखिए तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया, ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था, इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वेब कास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है, उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है, और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया, उसका छानबीन चल रहा है।
12: इस बार बहुत दिनों के बाद चुके लोग वोट डाले हैं, इसलिए आप देखो बड़े बड़े पोल पंडित भी नहीं बोल पाएंगे, जो एग्जिट पोलर चाहे जो भी हो, क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस देख करके बोलते हैं। तो इस बार एसआईआर के माहौल में और उसके बाद नए वोटर्स आए हैं और बहुत से लोग जो 15 साल से वोट डाले नहीं है, डालने दिया नहीं गया, वो वोट डाले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरप्राइजिंग होगा रिजल्ट, और खास करके जो कंटेंडर मेनली बीजेपी और टीएमसी के इतने ड्रामाबाजी आप देख रहे हो, वो गणना के बाद क्या सूरत हाल होगा उन्हें नहीं मालूम है, बल्कि अपने अपने भाष्य पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।
0: Meanwhile, historic arrangements have been made for the counting of votes in West Bengal. All arrangements have been made by the Election Commission in this regard. Chief Electoral Officer Manoj Agarwal spoke to my colleague Manogya Loiwal on this regard. Listen.
15: Historical arrangements have been made in West Bengal for the counting day, 4th of May. To talk more on this, I'm joined by Chief Electoral Officer Manoj Agarwal. What are the unique things that are being done in the state of West Bengal for the first time for counting day?
16: See, first of all, we are taking a certificate from the DOs for all the counting venues within the districts. We have got 24 DOs and 77 counting venues. That the arrangements in each and every counting venue is conforming with the circulars, notifications, GOs of the Election Commission of India, the RP Act 1951, the Conduct of Election Rules 1961. And nothing has been left to chance. Is 100% compliant with that. Secondly, we are undertaking from each and every staff who is deputed for counting and for election duty, including the paramilitary forces and state police and other people who are there, that they will do their duty 100% freely and fairly and will not get compromised. In case of any issue, any measure being there to the contrary, then they will be held responsible and severe action will be taken against them.
0: And with only a day left for the counting for the state of Tamil Nadu Assembly elections, the political temperatures are soaring in the state. The ruling DMK has written to Tamil Nadu top cops seeking preventive measures ahead of the counting day. The party has expressed apprehensions of possible disruptions at the counting centres by the BJP and other parties. It has demanded adequate deployment of security forces and close coordination with all security agencies to ensure law and order. Ahead of the counting, a war of words has erupted. DMK leader TKS Elangovan has said that the party will win and form the government once again. On the other hand, AIADMK leader Kovai Satyan has slammed the party, saying that the party lacks synergy and that the cadres did not function together on the ground. Congress MP Manikam Tagore, on the other hand, expressed distrust in the exit polls and said the people would decide their pick and that one must wait for their verdict.
17: Because of BJP, even ADMK is going to lose. That is what has happened in the past. In many elections, whoever is with BJP had lost and never won. BJP, the people of Tamil Nadu will not accept BJP.
18: Mr. Inbadurai, you have made a complaint before the Election Commission. You have made certain demands. If you can take us through the details of this complaint.
9: Sir, I have given a complaint regarding the fake passes given to DMK IT wing people. DMK IT wing people are, they have moved through the DIPR. I reliably learned that information department officials, they have given some names and all over all the district in 65 centers. They are urged the concerned authorities to get a pass, enabling them enter the counting centers.
19: Law and order should be maintained. BJP, as you know, they are, according to the news reported in the social media, they are planning to do so many things, because DMK is definite to form government. MK Stalin is going to become the chief minister of Tamil Nadu. That has been already decided by the people of Tamil Nadu. At the last moment, with the help of the Election Commission, BJP may do or play their foul game. So we should not be a prey to it. So precautionally, DMK legal wing has given a complaint to the Election Commission.
20: We've been saying from the beginning, the DMK alliance, as it was stated that it is a mightier alliance, is not so, because they don't have a synergy, they don't have a common minimum program, and the cadres on the ground will not work together, which we see. And we've been saying this for long, but DMK, since they have a very good inroads into media, didn't let this thought process run through the minds of the people. Tomorrow is a D-Day. That's the end of dynasty rule for both father and son. So democracy will bloom in Ariwal and DMK office because of AIADMK.
21: Vettiyum tholviyum veeranukkazhagu endru solvargal. Andha ennathin adipadaiyil pettikkulle ennikkai ponadharku pinnal kavalai paduvadhile endha arthamum illai. Vettikku vaakku பெட்டிக்கு போவதற்கு முன்பாக நம்முடைய முயற்சியை, நம்முடைய தீவிர முயற்சியை நாம் காட்ட வேண்டும், கொடுக்க வேண்டுமே தவிர, பெட்டிக்குள் போனதற்கு பிறகு எண்ணி சொல்லுகிற நேரத்தில் நம்முடைய எண்ணத்தை பலவிதமாக பரவ விடுவது, நம்முடைய மனதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வது, நமது எண்ணங்களில் வெற்றியா தோல்வியா என்கிற அந்த பேச்சுக்கு இடமளிப்பது என்பது கூடாத ஒன்று என்பதிலே நான் அழுத்தமானவன்.
22: நைட்டு தூக்கம் வந்து இப்ப நாளை காலையில் என்று இன்னைக்கு நைட்டு ஃப்ரீயா தூங்குவீங்களா?
21: தாராளமாக தூங்குவேன். ஏன்னா நான் வெற்றி பெறப்போகிறேன், என் கட்சி வெற்றி பெறப்போகிறது, என்னுடைய பொதுச் செயலாளர் முதலமைச்சராக போகிறார். எனவே எங்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கம் வரும்.
23: Polls which has been now commercialized, therefore I don't believe in the exit polls, because there are telephony calls, there are no personal interviews and others. For we should wait for the verdict of the people, and the people has given the verdict, and it's time that we wait and know the results in 24 hours. In Tamil Nadu, we can see that the turnout has been, increased turnout was there, and we hope that the youngsters and the youth and women have spoken. There is a hope that the democracy in the country will have a greater impact.
24: Exit polls are nothing but an exercise to popularize the various so-called agencies which had taken the polls. I am certain that all the exit polls will be proved false, and the DMK rule, the Dravidian model 2.0 rule, will certainly come again to power in Tamil Nadu. And our honorable Dravida Munnetra Kalakam's chiefs, Muthuvel Karunanidhi Stalin, will assume power as the chief minister of Tamil Nadu for the second time, and DMK will come back to the power for the seventh time.
0: And he could be the biggest X factor of this election, with just hours to go for the counting. All eyes are on actor-turned-politician Vijay. The TVK chief is drawing rare praise from across political spectrum. Both allies and rivals are taking note of his growing presence. From being called a force to reckon with to predictions of surprising results, there is a clear buzz around his impact. So as Tamil Nadu votes are counted, the big question is, can Vijay convert star power into real electoral numbers? Here's more in this report.
1: In a state long dominated by Dravidian majors, Vijay's entry has disrupted the script. With strong youth connect and appeal among women voters, his political plunge is already making waves. And now a surprising endorsement has come from within the ruling camp. MDMK Chief Vaiko, an ally of Chief Minister M.K. Stalin, has called TVK a force to reckon with, even hinting at surprising results.
2: TVK will be a force to reckon with, and it may produce surprises when the results are declared. There is a possibility. There is a swing among the students and first-time voters in favor of TVK.
1: Congress MP Manikam Tagore too acknowledged Vijay's popularity among youth and women voters.
3: I had always been saying that Mr. Vijay will have a huge impact, and Mr. Vijay is a popular figure in Tamil Nadu, and we saw a lot of young and women voters being in his rallies and others, and therefore he will have a huge impact.
1: Yet, BCK Chief Thol Thirumavalavan offered a reality check, saying Vijay may dent both DMK and AIADMK vote banks, but lacks the capacity to capture power.
5: புதிதாக களம் காணுகிற தமிழக வெற்றி கழகம் திமுக அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எதிரான வாக்குகளை பெருவாரியாக பிரித்துக் கொள்ள இருக்கிறார். ஆனால் தனித்த ஒரு சக்தியாக அவர் திமுக அதிமுக அல்லது திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி ஆகிய இரண்டு கூட்டணிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளி ஆட்சியை கைப்பற்றும் அளவுக்கான வலிமையை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை.
7: சின்ன தம்பி உன்னை நம்பி இந்த நாடு.
1: Adding a cultural dimension to the political buzz, legendary composer Ilaiyaraja set social media abuzz with a nostalgic post featuring a young Vijay from the film Idu Engal Needi. The song's evocative line, Chinna Thambi Unnai Nambi Indha Naadu, loosely translating to "The state waits for you, little brother," has been widely seen by supporters as symbolic backing at a crucial moment. Vijay's entry has reignited comparisons with icons like M.G. Ramachandran and J. Jayalalitha, leaders who successfully bridged cinema and politics, even as past attempts by stars like Kamal Hassan and Vijay Kant saw limited electoral success. A majority of exit poll results suggest a second term for the ruling DMK. With the counting day approaching, the big question remains, can Vijay translate fan following into votes at scale? In Chennai, Sam Daniel, Find It TV.
0: And a devastating incident has come to light from the national capital, where a fire broke out at a residential building in Delhi's Vivek Vihar early this morning. 9 people, including 1-year-old child, have died in the fire. 15 people have been rescued from the building and are being treated for their injuries at the GTB hospitals. Visuals from after the fire show charred bodies, collapsed structures, and huge debris at the building that caught fire. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reacted to the incident, expressing her condolences for the bereaved and ensured that senior officials were helping the injured in the incident. Aam Aadmi Party's Saurabh Bharadwaj has hit out at the Delhi Chief Minister, saying that while people were burning in the national capital, the Chief Minister was busy making reels. What became a major hindrance in the evacuation of many residents was the very floor plan. In the basement, plus the 4-story building, there is only one staircase route and no emergency exit. The incident has raised several questions, especially with regard to emergency exits and safety protocols in these constructions.
15: The building that caught fire in Vivek Vihar, it was not just that building that caught fire, but nearby buildings also had caught fire. We'll in fact show you the visuals of that very building, which also in fact caught fire, which was just adjacent to it, one by one in the pictures. You can see that how this room of this building is completely burnt down. Not just this, but in fact we'll also go close and show you the pictures of this very adjacent building where this entire incident took place. You can see, start here from the AC. In fact, it was the AC which caught fire first, and then slowly this entire area was engulfed in the fire. And then on my left, you can see that this is the particular building where at 3:05, where around 3:45 a.m. this building caught fire and has killed 9 individuals. You can see, please zoom in and show the pictures of that very building, where you can see that how everything is completely destroyed. Nothing remains. Ma'am, you were here. We would like just like to request you to come over here and explain that how the sequence of incident unfolded. What did you see first?
6: First, I see my daughter was sleeping here, and the smoke are flow rapidly, बहुत high level पे एक smoke अंदर आ रहा था. तो मैंने जाके खिड़की में देखा और check किया तो बगल वाले घर से बहुत बड़ा flow.
15: पूरी building में आग लग चुकी थी. और यदि आप यहाँ पर नहीं आते, यहीं यदि आपके वक्त पर नींद नहीं खुलती, तो जो सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पर, वो यदि फटता, हाँ, तो और गंभीर हादसा
6: हो सकता था. बहुत ज़्यादा सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हम लोग नीचे भागे, क्योंकि बगल वाले घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी और आग, इतने धुआं था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है. तो हम नीचे जाके देखा तो बगल वाले घर में आग लग हुई थी और वो लोग बचाओ बचाओ की सिचुएशन में थे.
15: चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी आपको
6: कि बहुत बहुत रो रहे थे. और हमने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस को बुलाया, जो भी कर सकते थे, जो हेल्प कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश करी.

0: Welcome, your watch Battleground Bengal. I'm Padmaja Joshi, and here on NDTV, we take our data very, very seriously. So today we are going to talk about the seats that are going to be the decider, the nail-biter seats of West Bengal, on which a lot of political fortunes and futures are going to hinge. In exactly 36 hours from now, when at 8 a.m. on Monday morning, May the 4th, the first batch of postal ballots will be cracked open and the initial leads in tens and hundreds will begin to trickle in. We will, with bated breath, be keen to see the leads, especially the battleground state of Bengal. While some of us will obsess over the BJP's 54 seat fortress in the north, some will be keen to figure out how the 53 seats in the minority belt voted or how Didi did in her Kolkata bastion. There is one parameter that cuts across ages and interests, the VIP seats. Whether you are from Bengal or not, you will be glued to the screen. Diamond Harbour and many other top contests, and perhaps many of them bellwether seats, which will tell us which way the wind is blowing, and which is why we will not engage in any debates, try and second guess what's going to happen, listen to politicians making their claims, which of course they will. Every side is winning until the EVMs are open. What we will do is talk about data and tell you about these 37 seats which are going to hold what we call the key to power or the satta ki chabi. Each seat, what are the factors that matter? What is the demography like? What is the SIR deletion like, and how it could eventually decide the fate of these seats? So let's start with the first batch, and we are starting with the most keenly watched area, which is Kolkata. And we've picked four seats from Kolkata and one from Purb Midnipur, all of them big names, very important. Bhabanipur, Kolkata Port, Kashipur, Belgachia, Belghata and Nandigram. We'll go through all of them one by one. Bhabanipur, in fact, we have on NDTV discussed in detail. So we'll take very quick word on Bhabanipur and which way it is going. Joining us in this data crunching and analysis is Manoj Singh, the founder and president of Matrees. We also have with us sophologist Jay Mrug and political analyst Tushar Gupta. Jay, quickly, let's start with Bhabanipur. Shubhendu Adhikari versus Mamata Banerjee. It's like the whole world knows about Bhabanipur now. Which way is Bhabanipur going?
1: I think it's a tough contest. 58,000 lead in the last election. Lead narrows down in the Lok Sabha. A near 27% deletion because of SIR. Hmm. So yeah, I would hold it at tough contest. I wouldn't, you know, wait.
0: Tushar, tough contest or it's decided in your mind?
2: The Bhabanipur seat?
0: Bhabanipur.
2: If BJP is not winning Bhabanipur, then it's not winning the election. It's that simple. If seats like Bhabanipur cannot be won with the updated electoral rolls, the way the improvement happened in the 2024 Lok Sabha, then they're not winning the seats. That's the thing about these seats, Padmaja. These
0: so
2: are
0: your analysis is BJP is winning, and BJP is winning Bhabanipur and the state, right? Because you're saying BJP is winning the state.
2: Yes.
0: So you're saying BJP is winning Bhabanipur. Manoj is also over here.
2: Yes.
0: Let's quickly welcome him also onto the set here. Manoj ji, idhar hi aa jaiye. Abhi aap hi ke numbers hum dekh rahe hain. Bhabanipur, आप कह रहे हैं टफ कॉन्टेस्ट, तुषार गुप्ता कह रहे हैं भवानीपुर जीतनी ही है और बीजेपी जीतेगी।
3: उससे ज्यादा बेहतर है, बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री खड़ी है, और जब भी सरकार और मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में हम कोई बताते हैं, पोल को बताते हैं, तो उसको एज देते हैं।
0: हाँ।
3: जहाँ की सरकार होगी उसको भी एज देते हैं, चूंकि वो मैनेजमेंट उनका होता है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का इतना तो जरूर होता है कि एकदम चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है तो उसको एज दिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री तो
0: 58,000 के मार्जिन से पिछली बार जीती थी, और अब आप कह रही हैं कि बीजेपी,
3: लेकिन आप पार्लियामेंट में 8,000 वहां जो था मार्जिन, उसको क्यों नहीं आप काउंट कर रही हैं?
0: ठीक है, तो जो 58,000 का मार्जिन था बायपोल में 2021 इन द लोकसभा इलेक्शन, इट वेंट डाउन, दैट मार्जिन वेंट टू ओनली 8,000. सो दिस इज नॉट अ सिटर, इट्स अ टफ कॉन्टेस्ट. तुषार गुप्ता डिसएग्रीज, ही सेज बीजेपी इज विनिंग इट. कोलकाता पोर्ट, राकेश सिंह वर्सेज फिराद हकीम, द मैन हु इज thought to be perhaps as powerful as the chief minister, her left hand man, she calls him her brother, Firhad or Bobby Hakim. Rakesh Singh versus Firhad Hakim, and you are giving it to the TMC. Aap ye TMC ko kyun de rahe hain?
3: टीएमसी को दे रहे हैं, एक मिनिस्टर भी है वहां पे. दूसरी बात है कि कलकत्ता में जो पिछली बार पूरी तरह से स्विंग कर चुकी थी टीएमसी, और वहां पे जो 7 सीटें, मुझे 6 और 7 सीटें जो बीजेपी के दिख रही है, उसमें से राकेश सिंह का नहीं दिख रहा, वहां पे काफी हुआ है, पोल भी बेहतर हुआ है.
0: और राकेश सिंह पहली बार लड़ रहे हैं?
1: नहीं, राकेश सिंह इज अ 2016 कांग्रेस कैंडिडेट.
3: कांग्रेस
1: बीजेपी हैज आल्सो ट्राइड अ लोकल को ऑप्शन.
0: Okay, and Rakesh Singh, by the way, is just out on bail. There was a lot of controversy about how somebody with a criminal past is being fielded by the BJP. But thoda sa, he's known as a bit of a strong man. Thode se ye bhi kafi dabang kisam ke aadmi jaane jaate.
3: Dekhiye, main ek cheez bata deta rahu. Aap chahe kitne bhi dabang ke hain. दबंग में एक मुस्लिम कैंडिडेट को माना गया, मुसलमानों में जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो यह देखा जाता है कि उसका उस समाज में कितनी दबंगई है या वहां पे उस एरिया में कितनी दबंगई है। हिंदू का जब सिलेक्शन होता है तो ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि भाई ये बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप के, तो उसका इफेक्ट पड़ता था वहां पर। वो चीजें राकेश सिंह का नहीं दिख रहा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर टीएमसी का
0: image, but here a constituency, Tushar Gupta, with a 40% Muslim population.
3: Haan, 40%.
0: 40% Muslim population going to the TMC. You agree?
2: That is where the TMC gets an edge because of the population, 40% Muslim population. That is the only reason the TMC gets an edge, because otherwise the BJP's vote share has also not considerably improved in the 2024 elections. But the SR deletions here are actually greater than the winning margin of 2021. So we also have to take into account. But again, I would agree here. TMC gets an edge purely and purely because it's a 40% Muslim population assembly, and they are going to lock, stock and barrel rally behind the TMC.
0: Okay, now let's talk about Kashipur Belgachia, and this is in North Kolkata. I think Kashipur Belgachia, really? North Kolkata. Ritesh Tiwari versus Atin Ghosh in this particular seat, and this also has been given to the TMC. Kashipur Belgachia, aap kyun de rahe hain TMC ko?
3: अब देखिए, क्या ये तीन सीट आप जाए चले जाइए कोलकाता का, तीनों का, कोलकाता पोर्ट चला जाइए, काशीपुर चले जाइए, और ये तीनों सीट, ये तीनों सीट है जहां पे मार्जिनल एज मिल रहा है। ये सीटें बदल विधान टीएमसी को मिला, लेकिन ये तीनों सीटें बदलने की संभावना है,
0: मतलब बीजेपी इनमें जीत सकती
3: है। सकती है,
0: तो वो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड इसमें आपने थोड़ा सा बड़ा यू नो लार्ज हार्टेडनेस में आपने दिखा दिया टीएमसी को।
1: क्वालिफाई दैट स्टेटमेंट, बीजेपी जीत सकती है,
3: जीत सकती है।
1: देयर इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, इन 2024 द मार्जिन with which the BJP lost shrunk to just 5%. That's point number one. Point number two, it does have a lot of North Indian voters also, Kashipur Belgachia. A third important point, this is exactly the constituency in which the RG Kar Medical College is also located.
0: Oh, okay. तो तब तो फिर सेंटिमेंट होगा यहाँ पे।
3: हाँ, तो इसीलिए कर रहे हैं। देखिए अभी एज, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सर्वे करते हैं तो दो तरह से करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं। दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम लोग कास्ट का भी देखते हैं, पोल का नेचर देखते हैं, कुछ दिन पोल किस तरह का हुआ, तो ये सब मिलाने के बाद लगा कि नहीं टीएमसी को तो एज मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा।
0: ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ तुषार गुप्ता पीपल हु आर बंगाली स्पीकिंग, and organizationally the Trinamool Congress is strong in Kashipur Belgachia. Who do you think looks ahead here?
2: Look, the TMC won this seat by a margin of 35,000 votes in 2021. The SR deletions amount to 58,000. That's point number one. Point number two, yes, the TMC organizational skills might be very good in this seat, but the BJP upped its vote share by 10 percentage points between 2021 and 2024. So clearly, the BJP is also doing something right. And I think someone mentioned that the RG Corps hospital is also located within this assembly boundary. So that will be also weighing on the minds of the people there. So I would give this seat to the BJP. To think that a 10 percentage point jump and the entire winning margin being wiped out and the whole anti-incumbency, because RG Corps is a huge case across Bengal amongst the women, and if it's not going to reflect here, where else will it reflect?
0: And also yahan par jo Ritesh Tiwari ka candidature hai, kya ye bhi inka Hindi speaker ka background hai inka, kyunki mere khayal se
1: yahan the city which has a lot of the old jute mills, a lot of the old factories and workshops. So it did have a lot of the old migrant labor from other states. Ye seat mein.
0: Which is why you've got Ritesh Tiwari, whose background is ki ye Hindi speaker hai. Matlab Hindi speaking Bengali hai. Aur yahan par kafi star power, because yahan pe hi, if I'm not mistaken, is the place jahan Manoj Tiwari, aapke jo Gorakhpur ke sansad hai, whose name I keep forgetting.
1: Mr. Ravish Kishan, he campaigned
0: Ravi Kishan
1: in this entire belt.
0: Exactly, Ravi Kishan, Manoj Tiwari.
3: करने गए थे,
0: पवन सिंह को यहां पे आरजेडी ने भेजा था प्रचार करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग, बट यू आर स्टिल गिविंग द लीड टू द टीएमसी, बट द बीजेपी कैन मेक गेन्स बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ दिस एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीट, बेलघाटा। हियर यू हैव कुणाल घोष, यू हैव सीन हिम ऑफ लेट बाहर कैंप करते हुए आउटसाइड यू नो दैट स्ट्रॉन्ग रूम वेयर ऑल द ईवीएम्स वर प्लेस्ड। कुणाल घोष इज द कैंडिडेट हियर वर्सेस पार्था चौधरी। हियर ऑल्सो यू आर गिविंग इट टू द टीएमसी रीजन
3: कैंडिडेट उनके बेहतर हैं, दबंग है, काफी दिनों से वहां काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज को देना चाहिए कि प्रथम चौधरी को देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये वो एरिया है जहां पे पहले से भी ममता का पकड़ रहा हुआ है और पिछला मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग
1: 65% ऑफ द वोट्स इज द लास्ट टाइम मार्जिन। सो देयरफॉर दिस हैज टू मोर ऑर लेस रिमेन अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड।
0: ओके, सो दिस इज अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड, सीम्स क्वाइट फेवरेबल टू देम। तुषार, एनी अदर थॉट्स अबाउट दिस प्लेस? कुणाल घोष प्रोमिनेंट फेस, दबंग इमेज है, मार्जिन बहुत अच्छा था, व्हाट डिड द एसआईआर डू टू दिस सीट?
2: द विनिंग मार्जिन हैज बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बाय द एसआईआर, ऑलमोस्ट, एंड दे हैड अ 65% वोट शेयर इन 2021। सो यस, इवन विद दैट मार्जिन बीइंग वाइप्ड आउट, द टीएमसी विल लाइक टू स्टार्ट एज अ फेवरेट, बट इन माय ओपिनियन दिस सीट विल बी टू क्लोज टू कॉल, आई वुडंट जस्ट गिव इट अवे टू द टीएमसी एट दिस पॉइंट।
0: इंटरेस्टिंग, सो वी ऑलरेडी हैव स्पोकन ऑफ 4 की सीट्स आउट ऑफ 11 इन कोलकाता, and at least 4 of them are seeming, at least 3 of them are seeming a tough contest. It's only in Belghata where we are giving the TMC an edge. Tushar disagrees even there. Why? Because of the SIR factor. Now let's shift our focus to Nandigram. In Purb Midnipur, this is where Shubhendu Adhikari is the sitting MLA. Pavitr Kar, who used to be earlier his aide, has been fielded. But you're giving it to the BJP. आपको लग नहीं रहा है ये जो एक विभीषण को TMC ने field किया है?
3: देखिए, पिछली बार क्या था कि ममता लड़ी थी, उनका मार्जिन कम था, एक बड़ा थी, तो उसमें चुनाव करने में वहां के लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे एक प्रयोग किया जाता है इनके क्षेत्र में किया गया था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, कि भाई हम अपने छोटे लीडर को भी लेकर यहां लड़ाकर देखेंगे तो सिंपैथी मिलेगा, कैडर जुड़ जाएगा। सिर्फ टीएमसी उतना ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के चुनने को जा रहा हूं।
0: हां, क्योंकि
3: एक तरफा वोट,
0: क्योंकि नंदीग्राम में, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, नंदीग्राम इज इन टू पार्ट्स, नंदीग्राम ए एंड नंदीग्राम बी, और नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, समथिंग लाइक दैट, एंड 1 इज हिंदू मेजॉरिटी, 1 इज मुस्लिम मेजॉरिटी। मुस्लिम मेजॉरिटी वोट्स टीएमसी को नहीं आएंगे, पवित्र कार को नहीं आएंगे?
3: उसमें से देखिए, जब सीएम का चुनने का बात हो तो लोग ज्यादा उसके तरफ झुकाव होता है, लोग
2: पिछली बार
3: उस जगह के लोग नंदीग्राम को लग रहा है कि इस बार मैं मुख्यमंत्री को चुनने जा रहा हूं, बार बार उसमें वहां पे

0: जो हम लोग गए थे उस पर बात भी हो रहे थे कि भाई ये तो भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें रिजाइन करके कहे कि नहीं, वो तो सिर्फ गए हैं ममता जी को हराने के लिए, ये मुख्यमंत्री भी रहेंगे तो नंदीग्राम से ही रहेंगे। ये सोचती हूं,
1: मोर प्रेशर ऑन सुवेंदु अधिकारी, नाउ ही कांट लीव नंदीग्राम इवन इफ ही हैपेंस टू विन बोथ द सीट्स। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस जय नंदीग्राम?
2: आई डू एक्सपेक्ट हिम दैट एज द एलओपी नाउ हैविंग एनीवेज वन लास्ट टाइम ही वुड एक्चुअली रीइंफोर्स द विक्ट्री. So I actually expect him to win by a bigger margin.
1: By a bigger margin. Tushar Gupta, what's the story on SIR here?
3: No. SIR or not SIR.
1: And again,
3: SIR,
1: I reiterate, because we keep saying that demography is going to be deciding, but you have a decent number of Muslims here. You have got, again, somebody who was with Shubhendu Adhikari in the TMC, knows, you know, his Achilles heel. You don't think that's going to be a factor at all?
3: So you see Kolkata put there, the deletions there were 70,000. In Nandigram, it's 7,000, roughly 7,000. So SIR is not a factor there. But if Shubhendu Adhikari is indeed heading to become the next chief minister of West Bengal, possibly Nandigram will see even a bigger BJP victory than it saw last time. It won't be a narrow victory, unlike 2021.
1: Okay, now let's take a look at the next set of seats. And this time we are talking about the seats which have got a lot of headlines. The first seat we are talking about there is Sandesh Kari. And this we are talking about North 24 Parganas. North 24 Parganas, we have picked up 7 seats here. North 24 Parganas is going to be very crucial for the BJP to be able to crack it. Manoji, abhi kitni seats hain North 24 Parganas mein aur kitni BJP, kitni TMC ke paas hai?
0: Dekhiye, pichli baar ka jo hai, aakda jo tha hamare paas, करीब करीब 50% का था, 65 सीटें दोनों शायद मिलाकर हो रही है ना, 24 परगना का दोनों का,
1: और उसमें से 24 परगनास टुगेदर हैव 65
0: हां 65% उसमें से बीजेपी का जो सीटें थी वो करीब 6 या 7 सीटें थी, लेकिन इस बार वो सीटें बढ़ते हुए आपको 20 के ऊपर जा रही हैं। यही एरिया है जहां पे टीएमसी का
1: नॉर्थ एंड साउथ में मिला के उनकी सिर्फ 6 सीटें थी, आप कह रहे हैं अब वो 20 पे जा रही है, एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ दीज विल बी फ्रॉम नॉर्थ 24 बिकॉज साउथ 24 इज अगेन वेरी वेरी टफ फॉर द बीजेपी, अगेन द सिंपल रीजन डेमोग्राफी।
0: 65 सीटें थी, 65 सीटें हुई थी, जिसमें से इस बार हाफ तक भी बीजेपी चले जाए, मैं उसको सुधार कर रहा हूं, चूंकि मैं उस समय बोला था ये 20 से ऊपर सीटें जाएंगी यहां पे बीजेपी की, ये दोनों
1: और ज्यादा गेन्स होंगे नॉर्थ 24 परगनास में। सो नाउ लेट्स लुक एट द इंडिविजुअल सीट्स, एंड दिस बाय द वे इज आल्सो एन एरिया व्हिच हैज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ द सो कॉल्ड हिंदी भाषीज, अगेन इट हैज दैट बैरकपुर एरिया वेर यू हैव गॉट द जूट मिल्स, यू हैव गॉट द ओल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेटल्ड हियर, एंड प्लस यू हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मटुआ वोटर्स एज वेल। मटुआ
0: दूसरी बात बता दूं कि ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भर भर के बाहर से लोग जा रहे वोट करने, तो उसमें सबसे ज्यादा कहीं के लोग आए थे, तो यही दो परगना है जहां पे लोग बाहर से पोल करने जाए थे, यानी कि यहां से मजदूर वहां पे ज्यादा गए थे और वो आ रहे थे फिर वापस पोल करने।
1: इंटरेस्टिंग, सो द माइग्रेंट वर्कर, ऑल दोस वीडियोस यू सी पीपल कमिंग इन ट्रेन्स वॉकिंग बैक, also coming back to North 24 Parganas, how does it affect the turnout or the result of this seat? Let's examine. Sandesh Kali, prone to violence, you had heard the horrific stories of how in Sandesh Kali, before the Lok Sabha elections, women had accused some TMC leaders, cadre, of rape. There you have Sanat Sardar going up against Jharna Sardar. In 2021, the TMC had won. This time you are saying that it's going to turn to the BJP. Why is that?
0: चीजें जब बदलती हैं, देखिए होता क्या कि हर जब आप विधानसभा के जाएंगी तो ऐसा नहीं होता है कि इस विधानसभा का नेचर कुछ और होगा, उस विधानसभा का नेचर होगा। जब इलेक्शन होता है पूरे स्टेट का तो उसमें सेंटिमेंट काम करता है कि भाई हमको कैसे पोल करना, वो सरकार के साथ होते हैं या तो सरकार के बाहर होते हैं, तो वो जो मेमोरेंडम चला है ऊपर से कि इस बार हमें सरकार को चेंज करना है, वो दिख रहा है कि यहां पे चेंज हो रहा है। जैसे संदेश
1: पोर्ट में क्यों नहीं हो रहा,
0: नहीं वो वहां पे फिर वो मुसलमान वाला एरिया आ जाता है।
1: यहाँ पे क्या है आपका, क्या पॉपुलेशन है?
0: पॉपुलेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 32% का करीब बासीरहाट में होगा, दक्षिण में, अभी मेरे पास वो नहीं है।
1: नहीं, संदेश खाली में हाँ। मुझे याद है वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी
0: है,
1: पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है। ओके, सो ट्राइबल पॉपुलेशन, दलित पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डिसाइडर हियर, एंड इट विल लीड द seat to flip to the BJP.
2: Between 21 and 24, the vote share difference shrunk from 10 to 4% in Bashirat also. That's what my data says. The second thing is, this time around, the BSP and MIM have also fielded Muslim candidates here. So it's sort of going to increase the polarity of the contest and maybe it just turns to favor the BJP.

0: बीजेपी.
1: ओके, इट कुड फेवर द बीजेपी, बट रिमेंबर दिस इज अ मुस्लिम डोमिनेंट, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस.
2: 42%.
0: यस.
1: हाउ मच?
2: 42%.
1: 42%.
0: But the six, but the
1: and data has shown that 30% and above Muslim population, BJP loses that.
3: Yeah. लेकिन उनका जो कहना उनके ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ पे चार या पांच मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं. तो ये जो पांच मुस्लिम कैंडिडेट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उधर से ज्यादा वोट मिले, अभी 2,000-3,000 भी वोट काटेंगे, जो वोट परसेंटेज 2021-2024 का देख रही है, तो ज्यादा लॉसेज है असेंबली के लिए हिसाब से.
1: बट इसमें आई हैव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि यस यू आर सेइंग कि चार पांच मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, चार मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, बट हम ये भी कह रहे हैं कि अनप्रीसिडेंटेड मुस्लिम कंसोलिडेशन.
3: 100%.
1: तो अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है तो वो तो टीएमसी को ही वोट देगा ना, मुझे ना वो कांग्रेस को क्यों वोट देगा? उसे पता है बीजेपी आ रही है उसका एसआईआर में नाम डिलीट करने के लिए.
3: दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यदि शायद मैं भी कोई विधानसभा चुन के खड़ा हो जाऊंगा तो इतना तो जरूरी कर लूंगा कि 500 वोट लेकर आ जाऊंगा. मैं जीतने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन 500 वोट ले आऊंगा तो 500 वोट कहां से आएगा यदि वो खड़ा है और कोई बैकअप है उस पर. देखिए क्या होता है चुनाव में हमेशा.
1: बट सर अगर आप 500 वोट काट रहे हैं, बासरहाट में मार्जिन भी बड़ा था पिछली बार,
3: बड़ा था ना,
1: तो इतने बड़े मार्जिन में 500-100 वोट इधर उधर कटने से हार थोड़ी ना जाएगी टीएमसी.
3: चार नहीं, इस बार वोट परसेंटेज भी देखिए, जो पिछला वोट परसेंटेज था मुझे मेरे हिसाब से 82 के करीब होगा. देखिए तो 81 के करीब होगा, और इस बार जो गया हूँ 90% सुपर पोल गया.
1: मुस्लिम्स भी वोट कर रहे हैं ना अपना.
3: मेरी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुसलमान पिछले बार 2021 में हाई पोल कर चुका है.
1: तो आप कह रहे हैं जो हायर वोटर टर्नआउट है ऑल ऑफ इट इज द हिंदू वोटर.
3: हिंदू उसमें ज्यादा है.
1: ओके, हिंदू उसमें ज्यादा है, तो बेनिफिट इस हायर वोटर टर्नआउट का बीजेपी को ज्यादा,
3: बीजेपी को हर सीट पे मिल रहा है.
1: ओके तुषार, डू यू अग्री विद दिस?
2: I would still give this seat to the TMC. I do not buy this notion that Muslims will suddenly very easily let their vote divide. I think that was something that was fashionable 2-3-4 years ago. Now they are far more aware, far more strategic in how they vote. I don't think this will really happen. If it happens, good for the BJP, but I do not see it happening at this point.
1: Because, you know, this factor is going to be at play in 80 to 120 seats. We have given you data of how 120 seats have 25% and above Muslims, and 80 seats have 50% and above Muslims. So if you have a consolidated vote happening, the TMC automatically starts with 80 to 120 seats in its pocket. You only need about 30 to 40 seats more above that. That is going to be very, very important. Now let's take a look at quickly at the next few seats. Like I told you, this is an area which you have a lot of people from the outside, traditionally Hindi speaking, jute mills, Barakpur, Bhatpada are those seats. Barakpur's Kaustubh Bagchi fighting against Raj Chakravarti. Again, you're saying this is going to flip. Interesting story about Kaustubh Bagchi. He used to be in the Congress and he is a lawyer. Very angry with P. Chidambaram. Once he famously told P. Chidambaram कि आप destroy कर रहे हैं हमारी पार्टी को, and now he has said कि जब तक मैं ममता बनर्जी को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं उगने दूंगा.
2: Barakpur is going to the BJP, right?
1: That's what Manoj is saying.
0: It's very logical because in 24 the margin shrunk to just 2%.
1: Okay.
0: So it's very logical if it can flip now.
1: पर क्या कौस्तुभ बागची strong candidate है? कांग्रेस से आए हुए
3: हैं. हाँ, ठीक है, अच्छे candidate है, जीतते हुए दिख रहा है. और इस बार यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि पोल को ध्यान रखिए कि पिछला पोल और इस पोल में क्या हुआ है. और आप देखेंगे कि
1: क्या फिर
3: काफी हद तक वहाँ पे पोलिंग बढ़ा है. तो उसका बेनिफिट जो है ना, देखिए लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई जो पोल इस बार बढ़ा है उससे टीएमसी को फायदा हो जाएगा. मेरा एकदम उससे अलग है. लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जो गए हैं वहां पे वो पोल किसको किए हैं, वो तो भी टीएमसी को किए होंगे. मैंने कहा कि एकदम किए होंगे, लेकिन वो 21 में भी किए, 24 में भी किए, भले वो ना किए हों, लेकिन मैं पद्मना जी का पोल मैं किया हूँ 21 में, 24 में, इस बार पद्मना जी करी.
2: Barakpur undoubtedly will go to the BJP. I agree with sir's analysis. Also, the SR deletions here are to the tune of 45,000 voters. The TMC won it by just 9,000 votes last time.
1: But again, this is a place where the Hindus are in majority. So of this 45,000, there could be
2: of those seven seats there on the board. I think the BJP will win six, at least six.
1: Okay.
2: And the BJP just won one last time. They'll win six this time. All because of that one seat, which is Basihar Dakshin, which has a 42% Muslim population. That won't be won by the BJP. That's my opinion. But the other six, I think the BJP is taking them home.
1: All right. So Barakpur, we have all agreed, is going to go to the BJP. Bhatpada, I think this is a no-brainer because ye to aapka khud Arjun Singh ka hai, gadi hai.

0: तो भाटपाड़ा में कुछ सरप्राइज तो नहीं हो सकता
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: ठीक है फिर भाटपाड़ा तो जा ही रहा है लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इट इज गोइंग। अमित गुप्ता कैसे कैंडिडेट इफ यू कैन क्विकली टॉक अबाउट पवन सिंह बाय द वे इज अर्जुन सिंह सन। अर्जुन सिंह यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन ही लॉस्ट नाउ ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम अ नेबरिंग सीट फॉर द असेंबली इलेक्शन
2: टू बीजेपी टू टीएमसी टू बैक टू बीजेपी।
1: और ऐसे फैन नेता है बड़ा पॉपुलर है और स्ट्रॉन्ग
0: और ये अपनी खुद की लोकसभा हार गए तो लेट्स एक्चुअली एग्जामिन दिस। आप कह रहे हैं कि ये खुद अर्जुन सिंह अपनी लोकसभा हार गए पर इनका बेटा असेंबली जीत जाएगा क्यों
1: उनका पकड़ है देखिए पार्लियामेंट
0: अपनी पकड़ से खुद को क्यों नहीं चला पाए
1: नहीं उस समय 6 विधानसभा जीतना होता है उस पार्लियामेंट में 6 या 7 विधानसभा 6-7 से जीत कर आना होगा
0: तो ऐसा उनका ये जो पार्टी हॉपिंग है उसकी वजह से भी लोगों का गुस्सा था उनसे
1: ऐसा मुझे उस समय नहीं दिखा था वैसा तब दिखता कि जब लोगों को लगता कि इनको वोट देकर हम जिताएंगे तो जाकर वहां पर कुछ हो तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा वहां पे स्कोप दिख रहा है तो उसमें नाराजगी का थी टीएमसी हारती तो उसकी नाराजगी थी
0: ठीक है सो यू गॉट भाटपाड़ा क्वाइट कंफर्टेबल दमदम नॉर्थ दमदम एंड बारानगर फर्स्ट दमदम नॉर्थ स्टेइंग विद द टीएमसी व्हाई इज दिस चंद्रमा भट्टाचार्य मिनिस्टर है
1: वो जीतेंगे दूसरी बात है कि वहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये सब जो चीजें हैं और यहाँ का उनका गढ़ भी है
0: ओके
1: टीएमसी का
0: टीएमसी
1: यहाँ
0: का
1: पे मुझे कोई परिवर्तन
0: किस वजह से गढ़ है
2: राय मैं एक प्रस्तुत कर रहा हूँ आप जरूर आपका ग्राउंड का अनुभव बताइए देखिए 2024 में लीड काफी कम हो गई थी बीजेपी 2% से पीछे थी दूसरी बात यहाँ पे 2021 में सीपीएम को 21% जितना वोट था अब गार्गी नंदी राय जैसे जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट है कह रहे हैं कि बहुत सीपीएम का जो भद्र लोग वोट था वो बीजेपी को माइग्रेट करने की सीरियस सोच में है तो क्या उससे ऐसी सीटों पे असर पड़ सकता है
1: नहीं एकदम पड़ सकता है दूसरी बात है कि दमदम ऐसा है जहां पे हिंदी माने बोलने वाला
0: हिंदी कोलकाता के उसी में है इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ नोएडा
1: पिछले बार भी वो बीजेपी में थे और ये निर्णायक वो लोग हैं लेकिन टीएमसी के जो रहे हुए कैंडिडेट जो मंत्री भी रहे हुए हैं काफी हद तक अपनी पकड़ को बनाकर रखे बहुत खराब इमेज उनका वहां पे नहीं गया
0: ओके सो शी इज द हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक चंद्रमा भट्टाचार्य इट्स एन अर्बन सीट व्हाट इज द एसआईआर एंड द मार्जिन सिचुएशन ऑन दिस
3: Dumdum North, right?
0: Dumdum North, yes.
3: The SI deletions are again more than the margin of victory from last time. The margin of victory last time was 28,000 votes. The SI deletions amount to almost 36,000 votes. And I'm comparing them to the elector numbers of 2021. So the victory margin has been wiped out. And this is again one other seat that the BJP needs to pocket. These all are seats that the BJP was closing in between 2021 and 2024. But if they cannot convert such seats, then getting to 148 becomes really difficult.
0: And you know, which is why we've been saying that not 24 Parganas is going to be critical to any changes that
2: it's
0: we
2: literally
0: see.
2: Literally the bellwether district. Actually.
0: It is the bellwether district. You're absolutely right. If there is one area, I think it would be North 24 and after that, Jangal Mahal.
2: Jungle,
0: you need to completely convert Jangal Mahal,
2: Jungle.
0: Get back all the seats from the TMC and you need to win in North 24.

0: Then let's talk about Damdam and Baranagar also. Damdam, Baranagar, both staying with the TMC. Do you agree, Jay?
1: Yeah. See, there's some trivia I want to share with our viewers. It's Baranagar is actually the seat of Jyoti Basu. And in 72, it was CPI which defeated the CPM candidate Jyoti Basu there. So, till the last election, the CPM has polled well in Baranagar. I do expect again that if this time a little bit of the CPM vote migrates to the BJP, it can flip it in favor of the BJP. But obviously, he has a better ground report, so I'll trust him than me.
0: यहाँ पे भी आपको लग रहा है
2: संगठन का गढ़ रहा शुरू से रहा हुआ है और जहां टीएमसी का गढ़ है इस पर एग्रेसिव होकर पोल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बस वही एक कारण है कि जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है लेकिन मुकाबला है
3: अगर गढ़ है तो फिर तो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात ही ना करें ना एंटी इनकम्बेंसी
2: बड़ा मार्जिन भी तो है मार्जिन भी तो बड़ा चल रहा है
3: जो किले हैं वो एंटी इनकम्बेंसी में तो गिरते हैं रायबरेली की सीट थी अमेठी की सीट थी 2019 में गढ़ था पर वो गिरा अभी हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ SIR का भी एक फैक्टर है आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है पूरे स्टेट में तो वो गढ़ों में भी तो दिखेगी ना एक पॉइंट
2: नहीं, नहीं, दिखेगी मार्जिन कम होगा लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे टीएमसी आ सकती है ये चीजें दूसरी बात है कि कोई चीजें चेंज होती हैं तो ऐसा नहीं कि सब चेंज हो जाएगा 88 सीटें जो है टीएमसी की जिसपे कहा जाता है कि इनकी मजबूत पकड़ है अब उसमें

0: वैसे भी मुझे घटते हुए दिखे तो फिर टीएमसी तो बहुत नीचे चली
1: जाए। पद्मजा, द क्वेश्चन देन रिमेन्स द सेम, इफ इन नॉट 24 परगनास कन्वर्जन बिकम्स दिस डिफिकल्ट फॉर द बीजेपी, आई हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशंस फॉर साउथ 24 परगनास, देन वेयर डज दैट मैजिक नंबर ऑफ 148 रियली कम फ्रॉम?
2: वेल अपेरेंटली फ्रॉम कोलकाता एंड देन फ्रॉम जंगल महल। बताइए आपको कहां लगता है मैजिक फिगर किधर से?
0: जंगल महल में ही है और कोलकाता भी है, दोनों जगह है। जंगल महल में भी इस बार बहुत अच्छा बीजेपी करेगी।
2: आप तो कह रहे हैं कि मालदा मुर्शिदाबाद में भी गेन कर सकती है ना बीजेपी?
0: मालदा मुर्शिदाबाद में मैंने तो कल भी बताया कि
1: कलकत्ता भी भद्रलोक है, वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है।
2: बताइए कि अगर कलकत्ता के भद्रलोक बदल रहे हैं तो फिर ये आपके दमदम के भद्रलोक में क्या प्रॉब्लम? दमदम के भद्रलोक क्यों यहाँ पर दम भर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए?
0: स्ट्रॉन्ग एरिया है टीएमसी का, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर भी ज्यादा है उस एरिया से, भाटपारा से या दमदम से कहिए। दूसरी बात है कि जो भद्रलोक की आप बात कर रहे हैं, भद्रलोक हर जगह पलटे, यदि भद्र नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं था कि 11 की 11 सीट कलकत्ता की सीट हमारे पास आ जाए।
2: ओके, सो ये दमदम नॉर्थ एंड दमदम जो है, इसमें यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ द कोलकाता सीट्स दैट वी हैव सीन। भवानीपुर से भी ज्यादा है, कितना रफली कितना मुस्लिम पॉपुलेशन होगा यहां?
0: मुस्लिम पॉपुलेशन जय जी, हमको लग रहा है कि दमदम वाला एरिया जो है उस पे मेरे हिसाब से कितना है, 34% से ऊपर है कि कितना है? मेरे हिसाब से 34 से ऊपर होना चाहिए।
3: हाँ, it is more than 34%.
2: Okay, more than 30% over here. Baranagar also we've already discussed. Now let's go to the next set that we are talking about. We have already seen Kolkata and not 24 Parganas. So, now we are going to go to the really the Waterloo, what we are calling the Waterloo of the BJP, South 24 Parganas. Diamond Harbour, Canning Poob, Bajbaj, Kakdweep, Nadia, we picked up one seat of Kaliganj, and Howrah, Howrah Uttar. South 24 Parganas, one more seat we picked up, Bhangar. Let's this time start from down. Bhangar, ये तो ISF के पास ही, नौशाद सिद्दीकी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है,
0: कोई चैलेंज,
2: लड़ते रहते हैं वो TMC के साथ,
0: वो करते रहते
2: उन दोनों का होता रहता है जूतम पैजार। TMC यहाँ पे बढ़त नहीं बनाएगी,
0: नहीं बढ़ाएगी मेरे हिसाब से।
2: TMC एनी चांस?
3: इसमें थोड़ा सा पेच है कि बिकॉज ही डिसाइडेड टू फील्ड अ कैंडिडेट इन कैनिंग पूर्वा, द टीएमसी डिस्पैच द कैनिंग पूर्वा शोकात मल्ला टू फाइट अगेंस्ट हिम हियर, दैट्स द ओनली ट्विस्ट इन द टेल,
2: एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट यू विल सी मैक्सिमम स्टोरीज ऑफ पीपल बीटिंग ईच अदर अप सो फार एंड गॉड फॉरबिड इवन ऑन काउंटिंग डे इन दीज टू सीट्स, Bhangar and Canning Purba, by the way, also had the largest polling percentage in the entire state. You've got a massive population of Muslims in both Canning Purba as well as in Bhangar. What do you want to say about both of these seats? Bhangar, we are giving to ISF, and Canning Purba, we are giving to TMC.
1: No. Even if there is a BJP tsunami, I don't think those two seats are coming to the BJP.
2: Because I'll ask you a question, Manuji. Because Canning Purba, jitna maine pata kiya tha, yahan par ek local jo hai, gussa hai TMC ke andar. Kyunki mere khayal se Shaukat Maula, jo pehle Canning Purba mein the, unko Bhangar bhej diya gaya hai. To unke log kafi protest kare the. Aapko nahi lagta hai ki iska kuch bhi factor hone wala hai? And again, here is a place jahan pe sare candidates barring BJP Muslims
0: hai. Dekhiye, yahan pe kada mukabla hai, lekin टीएमसी के लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है कि मैं कांग्रेस को चुनूं कि सीपीआई को। वो बीजेपी को चुनने में थोड़ा हिचक करेंगे, जो उनके कैडर वोटर हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और उनके जो कहिए कि गुंडा बदमाश टाइप के पर्वती हैं, वो चेंज नहीं करेंगे।
2: ठीक है, तो दीज आर द टू सेफ सीट्स, वन फॉर ISF, वन फॉर TMC. लेट्स टेक अ लुक एट द वंस व्हिच हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग। नदिया का जल्दी से बात कर लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द फ्लिप्स। इन नदिया वी हैव लुक्ड एट कालीगंज, बपन घोष फ्रॉम बीजेपी एंड अलीफा अहमद फ्रॉम TMC. इट विल स्टे विद द TMC, व्हाई इज दिस?
0: देखिए, आप वहां से चल जाइए ऊपर से नीचे से मैं जो इन्होंने कहा कि ये सुनामी वाला है, ऐसे भी हम लोगों ने क्या कहा जाता, 5 में से 3 दे रहे हैं बीजेपी को, 2 टफ फाइट में दिखा रहे हैं हम लोग दोनों सीट को। टफ फाइट में जब आप जाती हैं कि मैंने होता है हल्का एज मिलता है तो सीटें बदलते हुए हैं, और मैं कल भी ये बात बोला था कि जब कम मार्जिन वाली सीटी होती है तो जो पार्टी जीतती है ओवरऑल में उसके तरफ वो शिफ्ट होता है, वो बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीटें नहीं चेंज होगी। मैं इनके बारे में जो अभी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है,
2: नहीं तो कालीगंज टफ फाइट है या टीएमसी निकालेगी?
0: टफ फाइट है,
2: टफ फाइट है। क्यों टफ फाइट है?
0: टॉप फाइट इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी तो दिख ही रहा ना, जो बात बार बार हम लोग कर रहे हैं
2: एंटी इनकम्बेंसी, इसका मेकअप क्या है नदिया में, ये कालीगंज सीट का क्या नेचर है, क्या ये रिजर्व सीट है, क्या ये हिंदू बाहुल सीट है, क्या इसका नेचर?
0: देखिए यहाँ पे भी मुसलमान ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये 54% है,
2: 54% क्या मुकाबला है, तो ऑब्वियसली टीएमसी जीतेगी।
0: नहीं है, मैंने क्या कहा कि ये टीएमसी का पिछला पोल और अभी के पोल में कितना चेंजेज आता है वो देखना होगा।

0: Okay, what do you make of this?
1: This is a seat going to the TMC. If you're telling me that assemblies with greater than 50% Muslim population are somehow going to be won by the BJP, then
0: he won, it is a tough contest.
1: Oh, he has marked it to TMC, then it's, I won't say it's a tough contest, it's going to the TMC.
0: It is TMC, all
1: TMC.
0: Sorry sir, ये नहीं कोई tough contest है, यहाँ ये TMC को हम दे रहे हैं.
2: नहीं, मुझे एक
0: कालीगंज जा रहा है TMC.
3: ये कालीगंज जा रहा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से आप देखी होंगी लाइन इस बार, महिलाएं जिस तरह से खुल कर आई हिंदू का, तो वो वोट परसेंटेज घटाएंगे ही घटाएंगे टीएमसी को वहां पे 100%.
1: दमदम की महिला ऐसा क्यों नहीं कर रही है? व्हाई इज द बिहेवियर ऑफ द वुमेन देन? इफ द वुमेन आर मेकिंग दिस सीट अ टफ कंपटीशन, देन द वुमेन ऑफ दमदम एंड दमदम नॉर्थ शुड आल्सो मेक इट अ टफ कंपटीशन. दैट यूनिफॉर्मिटी शुड एग्जिस्ट अक्रॉस द स्टेट, इट शुड बी इन सिलेक्टिव सीट्स. My simple point is, in South 20 of Parganas, one thing that will work in favor of the TMC is, despite all the differences within the party, the candidate dislike or like, they will lock, stock, barrel rally behind the TMC. Because if they look at, if you're saying that the Hindus look at it as an existential political contest, the Muslims are also thinking, boss, we also need to retain the power. So why should we divide our vote? We need to back the TMC. We need to back Mamata Banerjee.
0: Okay.
1: Why would they act differently?
0: Okay, final point on Kaliganj.
2: No, I want to come to Baj Baj. Something very interesting. The BJP was a consistent third there. 2021 mein bhi, Manoj ji, BJP 44,000 votes se hari hai.
3: Hari hai woh.
2: तो अभी ये उम्मीद कहां से पैदा हो रही है बीजेपी के लिए?
3: देखिए, जो छपाई वाला जो था ट्रेंड, इस बार छपाई तो नहीं हुआ है. लोग वोट दिए हैं, कड़ाई हुई है, और जब ये जब छापा वाला वोट कम होता है तो सीटों का जो मार्जिन, जो उनका वोट परसेंटेज जो 54,000 का बता रहे हैं, वो कम होगा. जब कम होता है ये चीजें, तो दिखता है कि ये सीटें टफ फाइट में जा रही हैं. ये उससे तो तरह से दिखता है,
2: डायरेक्ट इजी नहीं है. बीजेपी टफ फाइट है,
3: टफ फाइट में.
2: जस्ट वन थिंग फॉर आवर व्यूअर्स, एक्चुअली दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट इन द सुंदरबन, अ लॉट ऑफ माशी लैंड्स, सो पीपल हैड टू वेयर लॉट ऑफ बूट्स एंड गो देयर. द ब्रिटिशर्स, द बूट्स मेड अ बज बज साउंड, सो द प्लेस गॉट द नेम.
1: ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग.
0: What do you make of this?
1: Oh, that's an interesting factor, I think.
0: I thought because the TMC refuses to budge from here. That's why it's called budge.
2: It's a nice
0: yes, go on.
1: No, budge, I think the TMC will...
0: Budge going to TMC. Yeah. All right. Very quickly, so you are saying that this is not changing. Ye keh rahe hain ki TMC...
3: दूसरी बात बता रहे हैं. जब भी हम लोग ये करते हैं...
0: budge का makeup क्या है? क्या पॉपुलेशन, क्या इनका ब्रेकअप है?
1: इट्स 39% मुस्लिम पॉपुलेशन, अप्रोक्सिमेट
0: 39% मुस्लिम.
3: लेकिन वहां पे इस बार जो महिलाएं निकल कर आई हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां महिलाएं काफी पोल की हैं, और 3.5% शायद उस इलेक्शन का विषय, 3.5% महिलाओं का पोल अधिक हुआ है. अभी ये है तो वैसे स्थिति में बीजेपी के लिए काफी अच्छा स्थिति है, क्योंकि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हो चाहे मुस्लिम पुरुष हो, पिछले बार वो पोल किए हैं.
0: नहीं, बट मुस्लिम महिला तो बीजेपी को वोट नहीं देगी.
3: मैं वही बता रहा हूँ,
0: महिलाओं में सिर्फ हिंदू महिलाएं आप कह रही हैं देंगे.
3: मैं वही बात बता रहा हूँ कि पिछली बार मुस्लिम महिलाएं तो उनको वोट की है. तो जो महिलाएं 3.5% ऊपर एवब की है जो पिछले के अपेक्षा में, तो वहां पे वो ले आकर सीट को वहां पे टफ, माने क्या कहेगा, जीतने में लेकर आ गई है. तो ऐसे स्थिति में हमको वेट करना चाहिए. दूसरी बात बता रहे, क्या होता है कि जब हम सीट बाय सीट हम लोग करते हैं डायरेक्शन, तो कभी होता है, आप याद रखिएगा, दिल्ली में सारे लोगों का यह था कि सौरव भारद्वाज जीतेंगे, लेकिन सौरव भारद्वाज हार गए और अतिशी जीत गई. तो यह चेंजेज होता है कि ये सीटों पे सीट वाइज, क्योंकि जब ओवरऑल हम जब करते हैं वहां पे जाकर एग्जिट पोल, तो हम सीट टू सीट नहीं करते हैं.
0: Okay.
3: वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो किसी विधानसभा में 50 भी आता है, किसी में 100 भी आता है, किसी में 200 भी आता है. तो ये क्या होता है, ओवरऑल वोट परसेंटेज जो आता है, जो कास्ट का वोट शेयर आता है, उसके हिसाब से फिर सीटों पे वो करते हैं.
0: ओके, तो अगर
3: दो तीन चेंज होता है.
0: ओके, दो तीन फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि अगर ये सीट चेंज होगी वो इसलिए क्योंकि महिलाएं ज्यादा आई हैं, मोर वुमेन हैव कम आउट टू वोट, एंड ओवरऑल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एंटी इनकंबेंसी एंड पोलराइजेशन, एंड द मुस्लिम्स आर जस्ट अबाउट एट 40%. सो It's not a Muslim majority seat. That's
3: दूसरी बात बता दे रहे, सॉरी आपको टोक रहा हूं. इस बार जो पिछले पोल है और इस बार में देखेंगे कि किसी किसी विधानसभा में 23% से ऊपर पोल गया है. ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो पोल बड़ा है वो 23% तक बड़ा है, 23% तक बड़ा है, तो कहां से गया?
0: Okay, so it's important to remember that South 24 Parganas also has seats now, which seem to be showing a trend for variety of reasons. Most importantly, the removing of fake voters, the increased turnout of women, एंड पोलराइजेशन एंड फाइनली दैट यू हैव

0: have a 60-40 population breakup, you know, a religious breakup, which is why some seats seem to be favorable to the BJP, which may flip. We are saying that there are at least 3 seats here, 1 in Howrah Uttar and 2 in South 24 Parganas, which might flip, and Diamond Harbour could be close. Let's take a look now at our second last, and we'll go very quickly because, you know, there is so much to talk, but I think we also want to pack in as many seats as possible so that on Monday you know what to look out for. There is going to be a deluge of information. Just keep your eyes on these 37. We've now come to Murshidabad and we've selected 4 seats over here, and this really, this is going to be the decider. We're saying that here in Murshidabad, you will have the BJP keeping its seat of Behrampur and the main Murshidabad seat, despite the fact, ye samjhaiye kaise Manoj ji, kyunki Adhir Ranjan Chaudhary mujhe laga ye jeet rahe hain Behrampur.
1: Nahi, Adhir Ranjan Chaudhary TMC ke vote ko kaat rahe hain,
0: to yani ki BJP ka margin
1: BJP ke liye hoga. Aur BJP ko, jaise hum Murshidabad ki baat kar rahe hain, Murshidabad mein 22 seats hain jisme se 20 already TMC jeeti thi aur 2 BJP jeeti thi. Yahan pe BJP ko 2 seat badhne ki umeed ki ja rahi
0: hai Murshidabad.
1: Murshidabad
0: total 20 mein se is baar wo 16 4 jeet
1: sakte hain, 4 seats jeet sakte
0: hain. Kaun si 2 aur seats jeet sakte
1: hain? बहरामपुर दिख ही रही है सामने आपको,
0: हाँ।
1: जो पिछली बार भी जीती थी ये था, दो और
0: दो बढ़ रही हैं,
1: बढ़ रही हैं, तो उसका बैकअप अब
0: तो बहरामपुर और मुर्शिदाबाद ऑलरेडी उनके पास था, हाँ। आप कह रहे हैं दो और सीटें, आप जल्दी से देखिए कौन सी दो और सीट है, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुर्शिदाबाद
1: तक आप उनसे ले लीजिए,
2: मैं आई जस्ट गिव यू अ फीचर ऑफ मुर्शिदाबाद पद्मा जा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट. The two most prominent urban centers, which is Murshidabad and Behrampur themselves, have actually had a BJP winning candidate in 21, even in the Lok Sabha leads in 24.
0: Okay. So this is comfortably with the BJP.
2: The municipalities
0: then,
2: or corporations remain with the BJP.
0: Okay.
2: Yeah, both of them. And okay. The rest of the district goes mostly with the...
0: Let's quickly talk about Domkal. Domkal
2: is... Humayun Kabir is not the AJ UP guy, he's another guy.
0: He's the IPS officer.
2: Yeah.
0: So there are two Humayun Kabirs. One is a former IPS officer. TMC is going to keep this. Any thoughts on Reji Nagar and... actually, both of them have a Humayun Kabir. Reji Nagar is also where Humayun Kabir is contesting. Oh, we haven't even listed
2: Reji
0: him
2: Nagar
0: here.
2: Has,
0: but it's going to be a tough contest.
2: Muslim voter.
0: Reji Nagar, by the way, is the seat where the so-called Babri Masjid is coming up. So that is what makes it a tough contest. So Reji Nagar, tough contest, and TMC is going to keep Domkal. Any
3: Reji Nagar, I won't say tough contest. It's 67% Muslim population.
0: Yeah, but Humayun Kabir is contesting there, no? So
3: even
0: and
3: then,
0: you have a decentish Congress candidate also in Reji Nagar. So maybe he splits a little bit.
3: But again, I really don't fancy BJP's chances here, honestly.
0: Okay.
3: And in Domkal, I think it's not even a conversation we should have. It's a straight out TMC seat.
0: Why is that?
3: हाई मुस्लिम पॉपुलेशन 87%.
0: आप बता रहे थे
1: अब जो सेकंड दो सीटें आप पूछ रहे
0: जो बीजेपी बढ़ा सकती है मुर्शिदाबाद
1: फरक्काबाद फरक्का है जहां पे पिछली बार टीएमसी जो है 60,000 के लगभग करीब वोटों से जीते
0: सर फरक्का है 70% मुस्लिम पॉपुलेशन
1: उसके बाद भी इस बार कांग्रेस वहां से वोट ले आ रही है वोटों में डिविजन हो रहा वहां
0: सर कैसे डिविजन हो रहा है अगर हम कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम वोट एक तरफा होगा
1: ऐसा नहीं हो रहा देखिये मुर्शिदाबाद में टीएमसी को लेकर काफी नाराजगी है मुर्शिदाबाद मालदा यहाँ पे जाएंगी आप तो वहां पे मुसलमानों के अंदर टीएमसी को लेकर काफी बुरा
0: आई अग्री वक्फ को लेकर के है आपकी ये बाबरी मस्जिद को लेकर के है बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फिर हमने जो डिस्कस किया कि अगर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सनातन को बचाओ तो दूसरी तरफ भी तो टीएमसी कह रही है कि अपने को बचाओ एसआईआर से तो अगर हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है सनातन को बचाने के लिए तो मुस्लिम भी तो कंसोलिडेट होगा ना अपने को बचाने के लिए
1: वो तो हमेशा रहा था इस पर उसको डिवीजन होते हुए
0: ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं दैट एक्चुअल डिवीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मुर्शिदाबाद एंड मालदा एंड उत्तर दिनाजपुर दैट इज गोइंग टू चेंज द स्टोरी कंप्लीटली बट I mean, I think that is still a little up in the air. Let's take a look at these two seats in Malda. And this, I think, is quite clear. It is going to stay with the BJP simply
3: yes.
0: because Malda and English Bazaar are the Hindu pockets.
1: दूसरी बात बता दे रहे हैं हम लोग जाओ चीज को छोड़ पाए मुर्शिदाबाद एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद है और यहां पे वो 4 से 6 सीटों तक जीत सकती है ये वो कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा
0: तुषार डजंट डिसएग्री तुषार डजंट डिसएग्री
3: कांग्रेस इज विनिंग 4 to 6 सीट्स इन मुर्शिदाबाद आई डोंट थिंक देन बीजेपी विल हैव अ प्रॉब्लम हिटिंग 160
1: तो
3: नहीं नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान टीएमसी से इतना नाराज है कि वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस की तरफ जाना है मुझे कैंडिडेट को देखना है फिर हिंदू तो और कितना नाराज होगा कि वो और प्रेसिडेंसी रीजन में बीजेपी को और बुरी बड़ी तरीके से जिताएगा ऑन मैथमेटिकल टर्म्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिंदू वोटर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द बीजेपी is higher than the Muslim voter going away from the TMC.

0: अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ से जा रहा है तो फिर हिंदू वोटर भी तो बीजेपी की तरफ आएगा ना।
1: हाँ तो आएगा, तो वो तो मैं तो कही रखू, वो तो आएगा, तो वोट डिवीजन के बाद तो हिंदू वोट तो एक तरफ आएगा बीजेपी का,
0: वो बाकी सीट्स में भी लागू होता है। फिर
1: वहां का जो था मालदा और मुर्शिदाबाद का अधीरंजन का एक अपना पकड़ है, और अब मुर्शिदाबाद में जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि मेरे गुरु अधीरंजन जी है। वो सिचुएशन के हिसाब से उनको उन्होंने खड़ा किया था, और इस बार आप देखेंगे अधीरंजन को पार्टी के सपोर्ट कम, पब्लिक के बीच में, जबकि वो अपना खुद को सीट हार रहे हैं। बरहमपुर सीट देखा जाए जहां से खड़े हुए हैं वो उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई है।
0: ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा और दूसरी पार्टी का कहीं इलेक्शन के बाद मिलने लग जाएगा,
1: ऐसा हो सकता है।
2: सो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द इलेक्शन। वेरी क्विकली आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट सेट, एंड आई थिंक वी वर लुकिंग एट कूच बिहार, बट आई थिंक वी कैन सेफली स्किप दिस एंटायरली। कूच बिहार, अलीपुर द्वार, दार्जिलिंग, दीज आर एरियाज वर द बीजेपी हैज प्रीटी मच स्वेप्ट, एंड आई थिंक यहां पे इट्स नो पॉइंट इन डिस्कसिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट, बिकॉज दीज आर, इफ देयर इज वन प्लेस वेयर द बीजेपी कैन कॉन्फिडेंटली, एंड सिंस आई हैव ट्रैवल्ड देयर, इट इज लार्जली द डेमोग्राफी, द पास्ट ट्रेंड्स, SIR डिलीशन इश्यूज, इट ऑल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी। दिस दो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव कम टू द जंगल महल एरिया एंड पश्चिम मिदनापुर। Jhargram is going to stay with the TMC, Purulia is going to stay with the BJP, no surprises there, Bankura is going to stay with the BJP. If you look out for the results here, you will pretty much be able to gauge the direction. Now look, if in Malda Murshidabad you see the seats turning from the TMC to any other party, the Congress, the BJP, Humayun Kabir, that means that Muslim consolidation hasn't taken place in the nature that it was, you know, thought, and which means that the only party which will suffer will be the TMC. If there is even one seat that is lesser than their existing tally in the north, in Kuch Bihar, Alipur Dwar, Darjeeling, Siliguri, then the BJP is far from increasing their tally, they are possibly going to lose this election.
3: Yes.
2: And if you don't see any seats being flipped in the Kolkata region, in not 24 Parganas, it has to be, you know, a 3:4, 75% BJP has
0: watch
2: to win.
0: Watch out for not 24 Parganas if it's not flipping towards the BJP.
2: And Jangal Mahal.
0: Not 24 Parganas alone is enough. Okay. Because the magic number of 148 warrants that the BJP has to get all its math right across certain districts.
2: All right. So we...
1: Parganas, ek batana cha raha
2: hu. Sir, 30 seconds. Jaldi boli.
1: Usse bhi kam lunga. चार डिस्ट्रिक्ट, पांच डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर बीजेपी खाता नहीं खुल पाई थी, अभी कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा
2: आपके हिसाब से।
1: जी मेरे हिसाब से।
2: ओके, सो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर गोइंग टू सी द बीजेपी मेकिंग इनरोड्स, एंड इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 districts वेयर दे हैव 100% स्कोर। इफ यू सी दैट हैपनिंग ऑन काउंटिंग डे, रिमेंबर वेयर यू हर्ड इट फर्स्ट, बिकॉज दिस इज NDTV, द OG ऑफ इलेक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।

0: Well, West Bengal 2026 Legislative Assembly elections have delivered a record-shattering 92.93 voter turnout. That is the highest in the state's history, setting the stage for what could be the end of Mamata Banerjee's 15-year rule. But that's if you believe the BJP, if you believe Mamata Banerjee, she is absolutely firm and that they will win in the elections. Polling in two phases on the 23rd of April and 29, and on the 29th across all 294 seats saw Mamata Banerjee's Trinamool Congress fighting to retain power against a resurgent BJP led by Shuvendu Odhikari. What's going to happen? That's the big story. Meanwhile, in Falta in South 24 Parganas, the Election Commission's inquiry has been concluded. NDTV's access, the Election Commission report on poll irregularities. As per the report, deliberate electronic voting machine obstruction was carried out, and also available footage has revealed multiple violations, including companion voting abuse, unauthorized people entering voting compartments, and multiple individuals voting together, breaching secrecy norms. The Election Commission has ordered a repoll that will take place on the 21st of this month. The Trinamool Congress has fiercely denied this. The Trinamool Congress MP from Diamond Harbour, Abhishek Banerjee, has slammed the decision of the Election Commission to conduct repolling. Meanwhile, people in the area have alleged intimidation and threats by the Trinamool Congress cadres. NDTV has accessed this Election Commission report on poll irregularities in Falta.
1: भारत किसी एक का तो नहीं है, सबका है। भारत में किसी भी प्रांत से कोई भी यहाँ पे काम के लिए आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है। अब दिल्ली में IIT है, उसका डायरेक्टर बंगाली है। तो वहां के लोग अगर बोलना शुरू कर देंगे दिल्ली के IIT में डायरेक्टर क्यों बंगाली रहेगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बंगाली बैठे हुए हैं। तो जहां पे पूरा भारत एक है, यहाँ पे गुजराती बंगाली सब मिलके रहते हैं। भवानीपुर में भी गुजराती रहते हैं, सालों से रहते हैं, 50 सालों से, 2 जनरेशन हो गए, 3 जनरेशन हो गए, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाली हो जाएगी।
2: देखिए, ये लोग तो सिक्योर्ड है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता सिक्योर्ड नहीं रहेंगे। तृणमूल का भीतर ही इतना अंदरूनी लड़ाई है पैसा लेकर के, जी अगर सरकार बदलने का साथ साथ ही तृणमूल को मारना चालू करेगा, इसको रोकना पड़ेगा। पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 95% तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और जो विक्टिम का परिवार है उसका कहना है हम लोग CBI का जांच चाहते हैं, पुलिस का ऊपर CID के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। कारण यह है जो सभी लोगों का कहना ही है, जिसमें कोई विपक्ष का रोल नहीं है, तृणमूल को मारा, लेकिन नया सरकार को आने दीजिए, वो सरकार संभाल लेगा।
3: फलता TMC राज में कभी सही भटिंग नहीं होता है। वो जितने हिंदू गांव है वो डरा के वोट से वो विरत रहते।
4: The great thing about television is that we've had a couple of days and this entire weekend to dissect and digest and absorb and speculate over the exit polls. But it's incredible how in just a few hours from now, all of that becomes completely redundant because we'll have